नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से थोड़ी ही देर में रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी।

0: अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
2: ये है विविध भारती।

सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, चिंता के समान शरीर का नाश करने वाला और कुछ नहीं है, इसलिए जिसे भी ईश्वर में जरा भी विश्वास हो उसे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये संसार एक माया लोक है और इस लोक में आकर स्वयं प्रभु भी रचते हैं लीलाएं, स्वयं ही हरते हैं जीव के मन से माया मोह के बंधन और करते हैं बंधन मुक्त भी, किंतु उनकी माया का रस अनोखा है।

जरा सोचिए तो, कौन होगा उस प्रभु से शक्तिशाली, जिनके इशारे पर नाचती है ये दुनिया सारी, उस पर भोलापन ऐसा कि प्रसन्नता से दुनियावारी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुनेंगे। आज सुनेंगे 224वां भाग। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक पंडित SL कंडारा। दूसरी कड़ी आज सुनेंगे और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शाम 6:45 से। 7 से भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम हैं राही प्यार के। 8 से सुनिए समाचार प्रभात। 8:15 से कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष। लेखन मिलिंद सबनिश का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। आज सुनेंगे 33वीं कड़ी। 8:30 से चित्रलोक और सुबह 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। 10 से सुन सकते हैं पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश का पुनः प्रसारण। ग्यारह बजे से रंग तरंग। 12 से हिंदी में समाचार और 12:05 से सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 का समय है सुरीला सफर कार्यक्रम का और 2 से पुनः प्रसारण होगा वंदे मातरम एक जय घोष कार्यक्रम का। आज सुनेंगे 33वीं कड़ी। 2:15 से दोपहर समाचार। 2:30 से आनंद लीजिए सदाबहार नकमे कार्यक्रम का। हेलो सहेली कार्यक्रम सुनेंगे 3 से। 4 पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए कहानी ज्वालामुखी। कहानी का लेखन और वाचन किया है निवेदिता श्रीवास्तव निवी ने। संपादन काजल भदरगे का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 5 से छाया गीत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। 5:30 से तराने नए पुराने। 6 से सुनिए हिंदी में समाचार। 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने और 6:30 से झरोखा के अंतर्गत सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रम का विवरण। 6:35 से संध्या रंजन और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक पंडित SL कंडारा और इस कड़ी की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे। 7 से जय माला। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। पुरातत्व के तत्व ये झलके सुन सकते हैं 8 से हवा महल में। लेखन नाजनीन का, निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर का।

रात 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। 10 बजे से सुनिए छाया गीत। 10:30 से ढलती जाए रात। 11 बजे से कार्यक्रम रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

आपको एक बार फिर से बता दें, वंदे मातरम एक जय घोष इस श्रृंखला की 33वीं कड़ी आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से और दोपहर 2 बजे से। और ये कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं झरोखा के अंतर्गत, जिसमें आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम श्री रामचरितमानस की 224वीं कड़ी। सुनिए,

तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थी, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहां संभव है।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत है और स्वागत है जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा साहब का।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: पंडित जी, पहली कड़ी में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दक्षिण भारत में वॉयलिन का आगमन हुआ, ये प्रचलित हुआ वाद्य, और धीरे धीरे ये उत्तर भारत की तरफ लोकप्रिय होने लगा। पहली बार उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के हाथ में ये वाद्य दिखाई दिया, आप बता रहे थे, इसके बारे में और अधिक जानना चाहेंगे कि और किन कलाकारों ने इस वाद्य को सीख करके इसे प्रचलित करने का, इसका प्रचार करने का प्रयास किया।
2: देखिए जयंत जी, वायलिन क्लासिकल म्यूजिक में और फिल्म म्यूजिक में
1: जी,
2: दोनों में बहुत प्रचलित हुआ। क्लासिकल म्यूजिक की बात करें अपन पहले, तो क्लासिकल म्यूजिक में उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के बाद उनके शिष्यों में से पंडित वीजी जोग, गजानन राव जोशी जी जो महाराष्ट्र के
1: जी जी,
2: उन्होंने भी इस बाजे को बहुत अच्छे से देखा और संभाला और इस पे काम किया। एन राजम जी जो अभी वर्तमान में हमारे साथ हैं, उन्होंने भी इस बाजे पे अच्छा काम किया। दाता जी,
1: डीके दाता, हाँ,
2: ये सब लोग बजाते रहे। लेकिन जोग साहब का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जोग साहब ने इस बाजे को एक्सेप्टेबल बनाया, लार्जली
1: जी
2: वाइडली एक्सेप्टेबल ये बाजा बना उनके कंट्रीब्यूशन से। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि वो सोलो वायलिन तो बजाया ही उन्होंने बहुत, लेकिन गवैयों की संगत भी उन्होंने बहुत की। उनमें कई सारे बड़े गवैये जिनके साथ वो बैठ के उनकी संगत की और इसको एक्सेप्टेबल बनाया। गवैयों के अलावा उन्होंने कई सारी जुगलबंदी बजाई, जो जुगलबंदियाँ आज भी रिकॉर्ड्स में उपलब्ध हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के साथ, अपना पंडित राम नारायण जी के साथ, मेरे गुरुजी के साथ, और भी कई लोगों के साथ। तो उनका एक कंट्रीब्यूशन ये बहुत ज़्यादा रहा
1: कि बहुत बड़ा योगदान है,
2: योगदान रहा
1: जी जी।
2: और उन्होंने इस बाजे का जितना अच्छा टोन प्रोड्यूस किया, एक खूबी जो उनकी, बहुत कम लोग वाकिफ हैं इससे कि जितना अच्छा ध्वनि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि
1: जी,
2: अंग्रेजी में कहते हैं टोन, टोनल क्वालिटी, उनके इंस्ट्रूमेंट में थी। वो किसी वायलिन वादक के इंस्ट्रूमेंट में इतनी अच्छी ध्वनि शायद संभव नहीं है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अभी ज्ञान कोई अंतिम ज्ञान नहीं है, तो लेकिन ये है कि ये सर्वमान्य सत्य है कि उन्होंने बहुत अच्छा टोन निकाला बाजे पे।
1: पंडित जी, यहाँ लगे हाथों एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये वाद्य पश्चिम से हमारे यहाँ आया है,

0: पश्चिम में जिस तरह से ये इसका स्वरूप था, भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनाने के बाद में क्या इसमें कोई बदलाव किया गया, किसी ने कोशिश की के इस भारत के संगीत के अनुरूप ये बजे, इसके लिए कुछ प्रयास हुए होंगे निश्चित रूप से?
1: जैन जी, ये थोड़ी सी दुखद स्टोरी है
0: जी
1: कि कुछ लोगों ने प्रयास किया और वो असफल रहे इसमें।

0: सारंगी बन पाया। सारंगी का जो टोन है वो अलग टोन है, वायलिन का टोन अलग है, वो तो कोई तीसरी बात हो गई विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। और वो फेल्यूर जो इन लोगों के हैं वो अपनी जगह पे ख़त्म हो गए। वो बाजा आज भी चार तार के सिवा नहीं बजता है।
1: जब वाद्य ही परिपूर्ण है तो उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश
0: नहीं। एग्जैक्टली
1: जी जी।
0: और जोग साहब ने चार तार पांच तार के साथ ही बजाया इसको, एक तार उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया था पर बजाया उन्होंने चार ही तार से ज्यादा।
1: आप पंडित जोग साहब के बारे में बता रहे थे।
0: जी, तो जोग साहब का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा और उन्होंने इस बाजे को पॉपुलर किया। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है ये जितना साउथ इंडिया में है।
1: जी,
0: हर फंक्शन में, हर म्यूजिकल इवेंट में इस बाजे का उपयोग होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वायलिनिस्ट हुए हैं। राइट फ्रॉम चौड़ैया टू MS गोपाल कृष्णन और
1: लालगुड़ी
0: जयरामन, इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको पॉपुलराइज करने में। और भी लोग हैं
1: समकालीन कलाकारों में,
0: सुब्रमण्यम जी हैं। हाँ, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो सक्सेस मिली है वो इनकी जोग साहब के कंट्रीब्यूशन की वजह से।
2: पंडित वी जी जोग साहब की आप बात कर रहे हैं तो क्यों ना अपने श्रोताओं को उन्हीं का बजाया हुआ राग श्याम कल्याण सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल, जरूर सुनवाइए।

पंडित वीजी जोग का वायोलिन पर बजाया राग श्याम कल्याण आप सुन रहे थे श्रोताओं। और आइए अब इसी राग पर आधारित एक गैर फिल्मी रचना आपको सुनवाते हैं, गायक स्वर ए हरिहरन का।

0: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: बुधवार शाम 7 बजे सुनिए कार्यक्रम जय माला, प्रायोजक
2: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन धूप।
3: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
4: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, विको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। विको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

रामी धोबन फिल्म के इस गीत के साथ ही याद किया फिल्म निर्माता और संगीतकार हीरेन बोस को उनके पुण्यतिथि पर, करते हैं उन्हें नमन। और रामी धोबन फिल्म का ये गीत आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में, राम मूर्ति ने इसे लिखा, हीरेन बोस का संगीत था। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हसरत जयपुरी के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आह फिल्म के इस गीत में शंकर जयकिशन का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे की।

0: अरे जा जा जा जा।
1: अरे सुन सुन सुन सुन।
2: आर पार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, भूले बिसरे गीत।

0: को वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: बाराती फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में सुन रहे थे। तन्वी नकवी ने इसे लिखा, रोशन का संगीत।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी

0: पापा को देखा।
1: रामा शेट्टी
0: और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: अफसाना फिल्म के इस गीत में लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। असद भोपाली के बोल, हुस्नलाल भगतराम का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

आंसू फिल्म के इस गीत में लता मंगेशकर मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। कमर जलाल आबादी के बोल पंडित हुसनलाल भगत राम का संगीत। इसके साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, विको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। विको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: विविध भारती कानपुर पर सुनिए कार्यक्रम आपके संदेश, जिसमें होगी आपकी आवाज और आपकी बात, जहां आपके पत्र, ईमेल और सुझाव बनेंगे कार्यक्रम का हिस्सा। हर महीने के दूसरे बुधवार को शाम 5:45 पर सुनिए आपके संदेश, सिर्फ विविध भारती 103.7 FM पर। तो अपनी प्रतिक्रिया हमें आज ही भेजिए। हमारा पता है, केंद्र निदेशक आकाशवाणी, बेना झाबर रोड, कानपुर। हमारा ईमेल एड्रेस है airkansomedia@gmail.com। हमें आपके ईमेल और पत्रों का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी आवाज है हमारी ताकत।

0: problem is education, nutrition, exercise.
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: उम्र है,
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना।
2: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें जुगनू फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
3: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें छलिया फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं।

0: जंजीर फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और

0: की कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

राजा रानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं जीत फिल्म का ये गीत। सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में जीत फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इसके साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए,

0: awards@awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: सद्भाव का संदेश आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
4: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
4: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
3: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
5: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे साथ में दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
6: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री

0: ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुणे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलो

0: किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द है, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
6: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनेस, हिंदी अनुवाद किया है जयंत पात्रीकर ने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 33वीं कड़ी।

बारिसाल की घटना का अंग्रेजी हुकूमत पर बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। निहत्थे लोगों पर इस प्रकार निर्ममता से लाठीचार्ज किए जाने की यह पहली घटना थी। उसके बाद ऐसी ही अनेक छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश राज सत्ता पर शैतान शाही की मुहर लगा दी। इन सब का परिणाम यह हुआ कि बारिसाल अधिवेशन के एक महीने बाद 14 मई 1906 को फुलर को वंदे मातरम शब्दों पर से और गीत पर लगी पाबंदी हटाने की घोषणा करनी पड़ी। ये समाचार मिलते ही बारिसाल अधिवेशन के शिल्पकार अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में 10,000 से भी अधिक जनसमुदाय ने बारिसाल शहर में एक विशाल जुलूस निकाला। सब लोग गा रहे थे, बोलो सिंह नादेर जय जय राबे वंदे मातरम, उठुक भवे शुनुक सबे मंत्र गंभीरतम, जय जय वंदे मातरम।

0: मातरम।
1: चलो सिंह स्वर में गाते हैं जय जय वंदे मातरम। संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो यह मंत्र वंदे मातरम। इस धीर गंभीर वातावरण में हम पुनः पुनः उच्चार करें जय जय वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: बारिसाल की जनता ने फिर एक बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आमंत्रित किया। जिस भूमि पर आपको अपमानित किया गया उस भूमि को आप स्वयं आकर अपने चरण कमलों से पावन करें, ऐसी विनती अश्विनी कुमार दत्त ने सुरेंद्रनाथ जी को की। फिर एक बार बारिसाल की सड़कों पर लगभग 50,000 लोगों का समूह एकत्रित हुआ। वंदे मातरम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जय, ऐसी घोषणाएं गूंजने लगी। बीएम हॉल में मोताहर हुसैन की अध्यक्षता में हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सत्कार समारोह में गीत गाया गया।

अर्थात लाठी के क्रूर घाव झेलने वाली बारिसाल की भूमि आज पुण्यवान हो गई है और वंदे मातरम गाते हुए वो माँ का जय

0: इस सभा पर फुलर ने कोई रोक नहीं लगाई। हालांकि हल्का सा विरोध करने का प्रयास जरूर किया गया, परंतु इस महीने भर में बारिसाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप जो जनक्षोभ पूरे भारत में उमड़कर आया, उससे फुलर मन ही मन घबराया हुआ था।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: बारिसाल की घटना की समूचे देश के समाचार पत्रों में कड़े शब्दों में आलोचना की गई। सरकार के समर्थक कहे जाने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया इस

0: अखबार में 28 अप्रैल 1906 को लिखा गया,
1: बरिसाल की इस घटना से राष्ट्रीय स्वाधीनता की जंग पर दूरगामी परिणाम हुए हैं। पुलिस के अत्याचार ने न केवल बंगाल को बल्कि पूरी दुनिया को ही जगा दिया है।
0: बारिसाल की घटना के पांचवे दिन अमृत बाजार पत्रिका में अंग्रेजों को चेतावनी दी गई।
1: बारिसाल की घटना की यदि पुनरावृत्ति हुई तो लोग प्राणों की परवाह किए बिना प्रतिकार करेंगे।
0: द बंगाली, इस अंग्रेजी पत्रिका ने लिखा,
1: लोगों के धैर्य की भी एक सीमा होती है। पश्चिम बंगाल की जनता को पीटने के लिए उठी यह लाठी किसी दिन सरकार के ही माथे पर टूट पड़ेगी।
0: क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्थान अरविंद घोष के क्रांतिकारी भाई बारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर में स्पष्ट रूप से लिख दिया,
1: इस अत्याचारी घटना के विरुद्ध भारत की 30 करोड़ जनता के हाथ बल का सामना बल से ही करने के लिए ऊपर उठने चाहिए।
0: हितवार्ता ने लिखा,
1: शस्त्र का उत्तर शस्त्र से ही दिया जाना चाहिए। पकड़े जाने पर एक छोटा सा कीट भी डंक मारता है तो फिर हम इस देश के वासी कब तक अपना संयम बनाए रख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन अब एक नए मोड़ पर आ गया है। हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य रूपी राक्षस यानी अत्याचार करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सजा देकर उनका घमंड नहीं तोड़ा गया तो एक दिन ऐसी आग भड़केगी कि उसे बुझाने के लिए हजारों लोगों का खून बहाना पड़ेगा।
0: मई 1906 को बंगाली इस समाचार पत्र ने लिखा,
1: 10,000 से भी ज्यादा हिंदू मुसलमानों ने बड़ा जुलूस निकाला। इस जुलूस में अल्लाह अकबर और वंदे मातरम दोनों घोषणाओं का जयघोष चल रहा था।

0: फुल्लर के अधीन होकर ढाका के नवाब ने इस बारिसाल मामले में सरकार की मदद की थी। नवाब के दादा अब्दुल गनी हिंदू मुस्लिम भेद नहीं मानते थे। दादा की ख्याति भूलकर नवाब ने सरकार की मदद की। बाद में अंग्रेजों द्वारा उनकी लाचारी का फायदा उठाने पर वे जागे। उसके बाद फिर कभी स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध ब्रिटिश राजसत्ता का साथ नहीं दिया। ढाका के नवाब का अपवाद छोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन बारिसाल के निमित्त एक बार फिर अंग्रेजों को हुए। मौलवी लियाकत हुसैन बंगाल के एक सम्मानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बंग भंग के निर्णय से उन्हें भी धक्का लगा था। रविंद्रनाथ के राखी बंधन के आह्वान का जवाब देते हुए वे भी इस उत्सव में शामिल हुए। अपने हर कार्यक्रम में वंदे मातरम ये गीत वे श्रद्धा से गाते थे।
1: बारिसाल की घटना के कारण अंग्रेजों की बची खुची छवि भी धूल में मिल गई। कई जुल्मी आदेश अंग्रेजों को वापस लेने पड़े। मीठी मीठी बातें करके सरकार स्थिति संभालने का प्रयास करने लगी। बारिसाल प्रकरण ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा का विषय बना। वंदे मातरम पर पाबंदी लगाने से ही उस आंदोलन को और अधिक धार मिली और इस पाबंदी के हुक्म से सरकार का ही अधिक नुकसान हुआ। इसका एहसास भारत मंत्री मॉर्ले और वॉइसराय मिंटो को हुआ और फिर एक बार मॉर्ले मिंटो सुधारों के रूप में सुधार का लालच आगे किया गया। पर ऐसे दांव पेचों से कोई भी बदलाव नहीं होने वाला।

वंदे मातरम का प्रभाव पूरे भारत में फैला हुआ था। वंदे मातरम की चिंगारी ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर ही दी थी, अब संविधाएं भी पढ़ने लगी थीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलगुरु रह चुके आशुतोष मुखर्जी ने फुलर के खिलाफ वायसराय से शिकायत की। उससे नाराज होकर

0: फुलर ने लॉर्ड मिंटो को अपना इस्तीफा भेज दिया और वो 3 अगस्त 1906 को मंजूर भी हो गया। कर्जन के बाद कर्जन का वरदहस्त प्राप्त अत्यंत अहंकारी अधिकारी फुल्लर का भी इस्तीफा मिलने के कारण आंदोलनकारियों का बल और बढ़ गया।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघुरूपक श्रृंखला की ये थी 33वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग दिया किरण बंग और समृद्धि नाइक ने, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ।

डोमिनिक सेजो, जॉय मेंडोला, माफ कीजिएगा लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेजो की आवाजों में आप सुन रहे थे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से ये गीत, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत। भाई वाकई हम पूरी जिंदगी किसी न किसी चीज का इंतजार करते रहते हैं कि भाई ये मौका अगर मुझे मिल जाए तो बहुत ही खुशी होगी, या ये व्यक्ति अगर आ जाए, या ये चीज मुझे मिल जाए। और जब वो चीजें, वो मौके और वे व्यक्ति हमें मिल भी जाते हैं तो फिर हम किसी और चीज़ के इंतजार में लग जाते हैं कि वो चीज़ें जब मिल जाएंगी तो हम खुश होंगे। तो इस तरह से खुशी को हम इंतजार करते रहते हैं, खुशी का, कि किसी खास चीज़ के मिलने पर हम खुश होंगे, और उसके मिलने पर भी हम उतने खुश नहीं होते और सोचते हैं कि अब और क्या जिससे हमें मिलेगी खुशी। तो क्या हमने भी इस तरह से अपनी जिंदगी को एक प्रतीक्षारत जीवन में बदल दिया है? सोचिए इस पर और सुनिए कार्यक्रम का ये गीत।

0: मोहित चौहान और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे तनुवेट्स मनु फिल्म का गीत, राजेश शेखर ने इसे लिखा, कृष्णा का संगीत। भाई वाकई जिंदगी में कई बार जो चीजें मिलती हैं हम उससे खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि असफलताओं, निराशाओं और उदासियों का दौर जिंदगी में आता ही है। लेकिन इन परिस्थितियों से निकलने का जब हम हौसला करते हैं तो वो जो चीज है वो हमें अनोखी शक्ति देती है। कई बार स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ होता है तो इससे भी बहुत सी परेशानियां रहती हैं और लगता है कि क्या किया जाए। तो ऐसे वक्त में अगर एक अच्छी सलाह हमें मिले तो क्या ही फायदा हो। तो कुछ ऐसा ही संदेश आइए सुनते हैं।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों

0: बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: श्रेया घोषाल।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के।

0: ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆਣ ਕੇ।
1: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती।
2: शनिवार शाम 7 बजे सुनिए विशेष जयमाला, प्रायोजक देव दर्शन
3: धूप। सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन धूप।
2: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

माफ कीजिएगा, शादाब साबरी और अल्तमश फरीदी की आवाजों में नीलेश मिश्रा के बोलते प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और आपको बता दें कि 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर।

0: इरशाद कामिल के बोल आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में। रॉकस्टार फिल्म के इस गीत में संगीत A.R. रहमान का। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रवि

0: रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

चिलर पार्टी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, अरमान मलिक और साथियों की आवाजें, नीतीश तिवारी के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें, शब्बीर अहमद के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 3 बजे सखियां सुन सकेंगी अपने फरमाइशी गीत हेलो सहेली कार्यक्रम के अंतर्गत। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और नटाली दे लूसियो की आवाजें थी। स्वानंद किरकिरे के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर सुन रहे हैं चित्रलोक।

हवाई ज्यादा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रोचक कोहली की आवाज में, विभू वीरेंद्र पुरी के बोल और रोचक कोहली का संकेत। कार्यक्रम में विद भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक और वक्त है एक अंतराल का।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। गुण गुण।

0: अग्निपथ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अजय अतुल का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं।

0: मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: कॉकटेल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत। भाई खुशियों के जो छोटे छोटे पल हमें मिलते हैं उन्हें ही चुनिए, यकीन मानिए इन्हीं से रोशन होती है हमारी दुनिया।
1: जुगनू बन के तू

0: स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और दिन भर जहां भी रहिए रहिए विविध भारती के साथ। अब आज के लिए दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा। कार्यक्रम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर, बस थोड़ी ही देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल,
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संग।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जवां दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहाँ तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

दोस्तों, ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृगया के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

इस फिल्म के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई

राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

मिथुन की कामयाबी में उनके फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना और ये फिल्म भी।

दोस्तों 80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

0: करोड़ जितनी बहुत बड़ा नंबर है ना। पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई, अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
3: तुझे सलाम, मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे सलाम।
4: कृष्णन अय्यर, यम ये के इतने सारे नाम,
3: तूने क्यों मुझे बचाया?
4: बस अपना फर्ज निभाया।
3: क्या तू कुछ भी कर जाता?
4: कर जाती।
3: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
4: अच्छा अच्छा, कर जाता।
3: मेरे लिए मर जाता?
4: हाँ मर जाता।
3: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
4: यू आर इन लव,
3: वी आर इन लव।
2: दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहा देर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म दलाल

दत्त जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन, हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप?

0: थाने में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर है सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता है।
1: जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: ओ, एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा।
0: तुझे दीप कहूँ या तारा, तो किसके लिए
1: हाँ,
0: सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को तो मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5,000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती, मतलब बोनी होती सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच
1: जी मैम,
0: प्रोटीन
1: बड़ा।
0: होता है।
1: जी जी मैम,
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने

0: फिरका
1: हाँ
0: से।
1: मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूं धान इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस
1: जी
0: समय
1: जी
0: आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है, तो बाग
1: जी
0: आपके
1: मैम,
0: पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे,
0: अच्छा, सिर्फ
1: और
0: चार
1: अभी
0: पांच पेड़?
1: जी जी
0: भाई
1: जी
0: हमने
1: बस
0: तो
1: 4-5 ही।
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं मैम इसके 5-6 पेड़।
0: अच्छा, जी बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए,
1: देवासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा शिमला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में, ऐसा गाना
1: नहीं नहीं
0: क्यों?
1: मैम, चलो पर नहीं नहीं पसंद नहीं है मैम
0: अच्छा
1: ऐसा
0: अच्छा
1: कुछ नहीं।
0: जी, एक समय
1: जी
0: जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत
1: जी
0: मशहूर हुआ था, हर किसी की जुबान पर ये गाना होता था। तो चलिए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया, सुनते हैं आपकी पसंद का ये
1: ओके
0: गाना।

0: कश्मीर से बात कर रहा हूँ
1: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
0: जी, मैं बड़गांव डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गांव, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
1: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गांव?
0: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
1: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहां जाते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
0: बस गाड़ी से आते हैं। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गा में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
0: जी, मैं बिजनेस करता हूँ, टाइल मार्बल और सीपी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाती है वही मैं बिजनेस करता हूँ।
1: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है?
0: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, तो हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
1: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
0: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी होती है, तो ये
1: 48?
0: नॉर्मल सी लगते
1: जी,
0: हैं।
1: तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुंचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
0: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे नदियां हैं। जय अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्थर की तरह की नदियां हैं, जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
1: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है
0: आपको
1: कि
0: सबसे मालूम,
1: वो,
0: जी, आपको पता है ये पहलगाम और
1: हाँ,
0: कश्मीर में पड़ता,
1: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड
0: बहुत
1: के
0: ठंडा
1: मौसम
0: पानी।
1: में गए थे। अच्छी बात यह है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए, इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
0: ये साजन फिल्म का नगमा ही देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य
1: हाँ
0: प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है। शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ,
1: हाँ
0: वहाँ
1: हाँ
0: के
1: ठीक है।
0: मूर्धन्य संगीतज्ञ पैदा
1: गौरव
0: हुए पंडित कुमार
1: हाँ
0: गंधर्व जी,
1: जी
0: जो उनका निवास है, देखा है आपने? बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है।
1: वो क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप घर?
1: देवास में आना जाना रहता ही रहता है।
0: जी बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत
1: हाँ
0: के चाहने वाले वहां तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर, वो बरसात का गाना है लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि वो शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 67-62 से ही।
0: अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले वाल वाले रेडियो चलते थे,
0: हाँ
1: जाली
0: हाँ
1: लगती थी, ये उसकी ट्रेनिंग होती थी सीखने
0: अच्छा,
1: के लिए। तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया और फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की,
0: अरे
1: वाल
0: वाह,
1: वाले
0: क्या
1: रेडियो।
0: बात है। तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे,
1: अब
0: रिपेयरिंग
1: तो वो
0: करते थे?
1: हाँ रिपेयरिंग करता था और वाल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई
1: हाँ
0: आपने। वॉल वाले रेडियो अब
1: हाँ
0: मिलते
1: बनाते,
0: नहीं है?
1: हाँ 5 बार 3 बार 2 बैंड 3 बैंड ऐसे
0: अच्छा
1: चलते थे वो।
0: जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं आप तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले। अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही
1: हाँ
0: है।
1: सुनना तो नहीं रहा अब तो, सुनना तो और ज्यादा होगा क्योंकि पहले, आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से 20 भारतीय आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
1: में। हाँ
0: और
1: मोबाइल
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था, उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध
1: हाँ
0: भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
1: दिक्कत होती थी। हाँ इधर से
0: है
1: उधर तक
0: ना
1: नहीं लगता था।
0: जी। लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बॉडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने
0: जी
1: उतने सारंगी वगैरह इतने भी उस टाइम समा मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का, ढोली
0: बिल्कुल,
1: हारमोनियम इतने अच्छे लगते थे।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैडम जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक मैडम, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी 2 दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते शाम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब
1: बिल्कुल
0: बारिश
1: जी
0: रुक
1: बहुत
0: जाती
1: राहत
0: है।
1: मिलती है इधर। तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, तो अभी कुछ राहत मिली है पहले से।
0: तो
1: आप सुनाओ, बॉम्बे का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का
1: वैसे
0: लोकगीत
1: भी
0: बहुत
1: हाँ बिल्कुल
0: समृद्ध
1: जी,
0: है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं,
0: क्या बात है
1: तो आज
0: भाई
1: तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है। तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं,
0: जी,
1: तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती
1: बिल्कुल
0: रहेगी, रेडियो चलता
1: हाँ
0: रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी, हमें देखो इतना साल हो गए छोटे इसको।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लता हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है, गुरदास
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: मान जी का गीत है, बह के वेख।
0: हाँ
1: वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, बस इतनी दो लाइन बोलनी थी।
0: जी, बढ़िया। और वहाँ का
1: बिल्कुल जी
0: खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग
0: हाँ जी हाँ
1: और
0: जी,
1: मक्खन घी दही सब कुछ
0: क्या
1: ये
0: बात
1: बहुत
0: है
1: चलता
0: भाई,
1: है फिर तो। हाँ
0: वाह वाह
1: जी,
0: वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गांव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूं होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है, गेहूं होता है, गन्ना होता है, ये खास

0: से चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया और धान हो गया।
1: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
0: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में आने लग गया है ना हमारे इधर, भुट्टा हम खा लेते हैं तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं चारा बन जाता है।
1: अच्छा अच्छा क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
0: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
1: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
0: जी देखी है जी मैंने।
1: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकिजा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मदपोरा श्रीनगर से जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी, बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, और आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है, आज धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है, और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी
0: तो उसकी खासियत क्या होती है, थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, ये कौनी जामा होता है, ये मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी,
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब तीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम तीली पे लगा, मतलब उसमें
0: वो जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ, वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना? अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, इसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार की
0: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत गाते हैं।
0: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे तो।
1: आपने कहा तो कोशिश करेंगे, इतना तो कह दो।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं, फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले हैं, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। जी
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक पे, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का सुनने

0: का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है, तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है।
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं, क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता
1: अपना
0: रहता
1: है। हाँ जी, रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी,
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज दबारी
0: जी। बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टहके तो अच्छा रहे, लेकिन
0: हाँ,
1: ये पक्षी है हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर,
0: हाँ
1: लेकिन
0: हाँ
1: अभी
0: हाँ
1: बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है। वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
1: बिल्कुल
0: आजाद
1: बिल्कुल
0: रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन
1: बिल्कुल
0: होता
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा,
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और
0: अरे वाह,
1: मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत अच्छा
0: हाँ
1: लगता है।
0: हाँ वाह,
1: और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब आप दाना डालते, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है। तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा
1: बिल्कुल
0: सुंदर लगता है ना।
1: बिल्कुल, मोरों के बीच में गांव में
0: हाँ
1: भी रहते
0: हाँ
1: थे
0: हाँ
1: और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को

0: देखा जाए तो उसको दाना यानी दाने में ज्वार है, बाजरी है, लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं। अच्छा। और वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, ज्वार, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है
1: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है क्योंकि?
0: बिल्कुल आते हैं, चक्री का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गांव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
1: तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो पक्षियों की पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि
0: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते है, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
0: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है, जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
1: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है घर?
0: नहीं, नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
1: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे वो भी आपको पता ही होगा ना?
0: जी बिल्कुल
1: जी।
0: बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुवारिका बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती।
1: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठा कर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
1: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: बताइए क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
3: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
2: जी क्या कर रहे हैं?
3: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं मैं अपने बेटे के लुक को लेकर।
2: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
3: अब आम के नाम तो मालूम लेकिन देसी आम है अपना खुद के, इधर हमारे पूर्वज जो है ना यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले आम
2: वही खा रहे हैं।
3: हाँ लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं उसको हम खा रहे हैं, मतलब अभी 10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
2: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं उसी से पेट भर जाता है।
3: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
2: जी
3: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे हम आम खाने के लिए।
2: जी और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपके पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
3: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
2: आम का जो बाग है बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
3: हाँ लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन के गुठले होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं अपने घूमने जाते हैं ना तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंकुर होकर एक पौधा बन जाएगा जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
2: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
3: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है, गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
2: ठीक है जी सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी, बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है?
1: दीदी मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और इसी परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे टॉवेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि मैं पानी की वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है। सब्जी के जो छिलके होते हैं
1: जी
0: उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाया जा सकते हैं ना, अगर आप
1: जी
0: बागवानी
1: जी
0: करती हैं
1: जी
0: तो।
1: जी और हमारे इधर तो हम लोग गांव में हैं तो घर में जैसे कि गाय है भैंस है तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे कि गड्ढा खन के मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं
0: ये तो बहुत
1: खाद
0: बढ़िया
1: के
0: खाद
1: रूप
0: होता
1: में।
0: है, गोबर की खाद तो सबसे
1: जी
0: अच्छी
1: जी
0: होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: आपके
1: जी
0: गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की, बताइए? कौन से पेड़ पौधे हैं वहां पर? ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ तो धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम
0: तो
1: लोग।
0: आपके
1: जी
0: यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली
1: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ
1: होता था जब
0: करता था?
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते हैं ना उस टाइप का था
0: चक्की जात वगैरह,
1: उसमें तो।
0: चक्री है ना?
1: जी।
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है, उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 2867-0288 और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, लिया है गीत गजल एल्बम से। धीरज कौर ने इसे गाया, मोहसिन नकवी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने इसे संगीतबद्ध किया।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से मुकेश की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों के साथ, मुरली मनोहर स्वरूप के संगीत से के साथ में यह प्यारा सा नगमा।

0: इंद्रानी रिज्व और राजकुमार रिजवी की आवाज़ में हम सुन रहे थे इस नगमे को। बशीर बद्र ने जिसे लिखा और बेनी सतामकर ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है।

0: अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
5: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
6: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
7: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा उर्दू मॉडर्न गज़ल एल्बम से। तलत महमूद ने इसे गाया, इब्राहिम फैज़ इसके गीतकार हैं और संगीतकार हैं ताज अहमद। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अगली नज़्म जो गाई है हेमंत कुमार ने। संतोख सिंह इसके गीतकार हैं और तरसीम लाल इसके संगीतकार।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाई।

0: रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
1: एक नई पहचान दी
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में। ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रंग तरंग में आइए सुनते हैं नॉन फिल्मी गीत एंड गजल्स एल्बम से मन्ना डे के द्वारा गाया हुआ और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ यह नगमा, जिसे लिखा है मधुकर राजस्थानी ने।
4: नत

मॉडर्न नॉन फिल्मी गज़ल एल्बम से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजे हुए खयाम के संगीत के साथ इस सुंदर से नगमे को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि है गज़ल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एल्बम से। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने इसे गाया है, साहिर होशियारपुरी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने ही इसे संगीतबद्ध किया है।

0: और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला नगमा।

0: रंग तरंग।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
3: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस, अधोरी घाट औनरिहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8 लाख

0: 35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। यह कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है, वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। यह दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादों की महफिल सजाई है महेंद्र कपूर की आवाज से। पहला गीत हम सुनते हैं अमराज फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत से।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या, हर रोज तुम रेडियो सुनती रहे?

0: रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यादों की महफिल में। आज हमने सजाई है यादों की महफिल महेंद्र कपूर की आवाज के साथ। तो आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म का यह गीत, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे गीत फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में, हसरत जयपुरी इसके गीतकार हैं, कल्याण जी आनंद जी संगीतकार।

0: गीतकार हसन कमाल के बोलों के साथ, संगीतकार रवि के संगीत के साथ सलमा आगा और महेंद्र कपूर की आवाज़ को हम सुन रहे थे निकाह फिल्म के इस गीत में।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस संदेश के पहले हम सुन रहे थे गीत धूल का फूल फिल्म से, महेंद्र कपूर लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी की बोल और एन दत्त के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जो कि लिया गया है नवरंग फिल्म से। भरत व्यास की बोल है, सी रामचंद्र का है संगीत और आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की।

0: हम सुन रहे थे गीत बदलते रिश्ते फिल्म से लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज़ों में अनजान के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने याद किया महेंद्र कपूर को उनकी आवाज़ के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक।

0: हरिशंकर राठी आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर तय कर रहा है एक बढ़िया मजबूत सी बात को और बड़े प्यारे से जज्बात को, और इन्हीं बात और जज्बात के बीच में बात आती है कि सुरीला सफर में हम जो इबारत देते हैं, आज इबारत कौन सी है? तो आज की इबारत है कि वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है, वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है, एक गीतकार अपनी कलम से जिंदगियां लिखता है। और अब आपको क्या करना है, देखना है, सोचना है, बताएं और अपने पसंदीदा गीतकार के बारे में सोचें और लिखें अवश्य ही, और उनका कौन सा गीत सुनना आपको पसंद है ये भी अगर आप बताएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। और आज की इस इबारत भरे सुरीला सफर में हमने जो इबारत दी उस पर बहुत सारे विचार आए हैं और प्रत्येक विचार अपने आप में उम्दा है, सटीक है, सत्य है, और उनमें से कुछ विचार जो हैं वो हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की प्रश्नवाची इबारत स्वयं ही संपूर्ण उत्तरित है। गीतकार, कवि, शायर और नगमा निगार वो हस्तियां हैं जो अपनी भावनाओं को शाब्दिक रूप से रचनात्मक और सृजनात्मक आवेश की सृष्टि कर रचनाओं और पाठकों का दिल के दिल में घर कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं आज की संपूर्ण इबारत ही दिल की धड़कन ही लिख दी है, धन्यवाद। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि गीतकार केवल शब्द नहीं लिखता, वह अपने भाव, अनुभव, संवेदनाओं को गीतों में पिरोकर लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। गीतकार के लिखे गीत कभी प्रेम का संदेश देते हैं, कभी जीवन की सीख, कभी उम्मीद, कभी प्रेरणा का सहारा बनते हैं। वो अपनी कलम से ऐसी दुनिया रचता है जिसमें हर श्रोता अपने मन की कहानी खोज लेता है। इसलिए गाने केवल मनोरंजन के नहीं हमारे जीवन की धड़कनों के संगीत भी होते हैं। बिल्कुल सही। हमारे एक श्रोता ने तो

बहुत सारे गीतकारों की वो जो विधाएं हैं उनको बड़े अच्छे से सजा दिया है। लिखते हैं रुमानी गीत, हसरत जयपुरी, शकील बदायनी, साहिर जी, ये आप बताइएगा ये सही लिख रहे हैं या नहीं। दार्शनिक जीवन दर्शन, शैलेंद्र गुलजार, आनंद बख्शी, प्रगतिशील विचारधारा, कैफे आजमी, देशभक्ति, कवि प्रदीप, गोपालदास, नीरज, प्रेम धवन, सुगम और विविध, मजरूह सुल्तानपुरी, राजेंद्र कृष्ण, भक्ति, पंडित नरेंद्र शर्मा, भरत व्यास, पंडित इंद्र जी, बिल्कुल बहुत सारे इन्होंने बातें लिखी हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया में जितने भी गीतकार, शायर और कवि हैं सब अपनी जगह महान थे, सब किसी एक को पसंद करना कठिन है। और ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने लिखा है कि कठिन है। हमारे श्रोता लिखते हैं, बोलती फिल्में आने के बाद फिल्मों में गीतों का प्रचलन शुरू हुआ और धीरे धीरे यही गीत फिल्मों की कामयाबी की गारंटी बनने लगे। गीतकार और संगीतकारों की मांग बढ़ने लगी, फिर गीतकार कवियों शायरों के सामने चुनौती आने लगी, कोई एक लक्ष्मण रेखा के अंदर उनको रहना पड़ा, गीत कहानी सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखने पड़े और गीतकारों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक से बढ़कर एक गीत लिखकर मिसाल पेश की है। गीतकार शब्द कागज पर नहीं उतरते, वे सीधे दिल में उतर जाते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। उनकी रचनाएं सुनकर लगता है जैसे भी हमारे अनकहे एहसासों को आवाज दे रहे हों। अच्छा गीतकार सिर्फ गीत नहीं लिखता, वह यादें, भावनाएं रिश्तों की खुशबू में पिरो देता है। ये बात बड़े अच्छे से वह लिखते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं। एक प्यारी सी बात कहेंगे कि गीतकार वह दीपक है जो शब्दों की लौ से भावनाओं का संसार रोशन कर देता है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। और इस बढ़िया सी सोच को, इस बढ़िया से विचार को पढ़ने के साथ ही हम आपको गीत सौंपने वाले हैं। और पहला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं, उस गीत में पूरा जो गीत है उस गीत में कोई एक पंक्ति होगी जो आपको जाकर दिल में चुभती होगी या दिल को सुकून देती होगी, तो बताइएगा वो पंक्ति कौन सी है, वो लिखकर हमें भेजिएगा और उसके साथ ही इस गीत के संगीतकार का नाम भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा। तो बताइए इस गीत की कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लगती है, साथ ही संगीतकार का नाम भी।

0: अपनी तो आंख एक है, उसकी है हजार। ये कौन चित्रकार है? ये गीत हम सुन रहे थे बूंद जो बन गए मोती फिल्म से मुकेश की।
1: आई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की मराद तकसीम करेंगे। वो अमली तौर पर मुल्क भर से मुस्तफीद होने वालों से खिताब करेंगे। मेहनत और रोजगार के वजीर डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू होने वाली इस स्कीम के तहत 63 लाख से ज्यादा कारकुनान, जिनमें से तकरीबन 30% खवातीन हैं, उनको बाजाफ्ता अफरादी कुव्वत में जिम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम से मुल्क भर में 15 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस स्कीम के तहत लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और मेरठ समेत रियासत के 17 अज़ला में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इस स्कीम का मकसद रोजगार की तख्लीक में तेजी लाना, रोजगार की अहलियत में इजाफा और तमाम शोबों में समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कवरेज को बढ़ाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योगा की जड़ें हिंदुस्तान के रूहानी और सकाफती विरसे में गहरी हैं और इसने मुल्क की सरहदों को बूर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वज़ीर-ए-मुमलिकत प्रताप राव के एक मजमून का इश्तराक करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बारे में बात की कि किस तरह कदीम नसूस से लेकर आलमी पहचान तक योगा ने सरहदों को अबूर किया है, जबकि हिंदुस्तान के रूहानी और सकाफती विरसे में गहरी जड़ें हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपने अयोध्या दौरे के दौरान अयोध्या धाम और रुदौलिया से मिली हलके को करोड़ों के तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी। वजीर आला ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद रुदौलिया से मिली हलके में मां कामाख्या धाम नगर पंचायत को 25 करोड़ रूपये से ज्यादा के प्रोजेक्टों की सौगात दी। साथ ही वीरांगना झलकारी बाई के आलिशान मुजस्मे की नकाब कुशाई के साथ 126 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान वजीर आला ने अपने खिताब में अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे के मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। वजीर आला ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की गुजारिश पर हुकूमत ने SIT तश्कील की है और यह जांच पूरी शफाफियत से होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कोई दस्तावेजी सबूत है तो उसे SIT को सौंपे और जांच पूरी होने तक गैर जरूरी बयानबाजी ना करें। वजीर आला ने कहा,
2: राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 4 रियासतों तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत MSP पर दालों और तेल के बीजों के बड़े पैमाने पर खरीदारी को मंजूरी दे दी है। यह खरीदारी इन रियासतों में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीदारी को मंजूरी दी गई है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को होने वाले NEET UG के दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने इम्तिहानी अमल में दयानतदारी, शफाफियत और कारकर्दगी के आला मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अहदेदारों को

0: फिल्म कभी कभी से यह गीत हम सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत और गाया मुकेश ने। और यही प्रश्न तो हमने आपसे पूछा था और इसके साथ हमने एक प्रश्न और पूछा था। हमने कहा था कि साहिल लुधियानवी की कौन सी पंक्ति है जो आपके दिल को छूती है। कभी कहीं और पढ़ी होगी आपने तो आपने लिखकर भेजी है कि अपनी तबीयतों का कोई गम नहीं मुझे, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। आह क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मशरूफ जमाना क्यों वक्त अपना बर्बाद करिए, दिल लाइन दिल को छू जाती। जी बिल्कुल, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। जी बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि साहिर की एक लाइन उन्हें पसंद है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। जी, कल और आएंगे नगमाए खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये लाइन हमारे श्रोताओं को पसंद है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने कक्षा 9वीं में देखा था इस फिल्म को और नौजवान दिल उस समय शायरी सुनकर धड़क गया था। सही बातें होता है ऐसा। और हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी अपनी पसंद के शेर हम तक पहुंचाए हैं जो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही और भी कई सारे आए हैं, उन्हें बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, जैसे कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, संसार की हाय शर पर बस इतना फंसाना है कि धुंध से आना है। बहुत सही बात आपने लिखी, बहुत बढ़िया शेर आप लिख रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बातें जो लिखी हैं इन सब गीतों और रचनाकारों के लिए, वो लिखते हैं कि गीत आम इंसान के जीवन के अनुभव छिपे होते हैं, अपनी कल्पना अनुभव से रचनाएं करते हैं और खुद की कहानी जिंदगी का कोई हिस्सा नजर आता है। सही बात है। आज की इबारत पंक्तियों का भावार्थ बहुत गहरा महत्वपूर्ण है। कवि गीतकार संवेदनशीलता उसकी कलम की ताकत रेखांकित करता है। वे सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है। सही यह दर्शाती है कि एक सच्चा गीतकार कागज पर केवल शब्दों का जाल नहीं बुनता बल्कि जज्बात, उसकी धड़कनें, प्यार, दर्द और उम्मीदों को पन्नों पर उतारता है। इतनी अच्छी बातें चल रही हैं तो हम सोचते हैं एक संदेश एक और गीतकार का आपको सुनवा दिया जाए। सुनिए ये गीतकार क्या कहने के लिए आने वाले हैं अपने विविध भारती पर।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और ये सुरीला सफर चल रहा है गीतकारों की कलम के साथ। हमारे श्रोताओं ने बहुत सही लिखा है, वो लिखते हैं कि गीतकार कैसे पसंद करते हैं। हमारे लिए तो सभी गीतकार पसंद हैं, हर कोई दिल में रहता है, अनुभूति करता है, मन को प्रफुल्लित करता है। और हमारे श्रोता ने कहा कि वो आज गुलजार, इतना कठिन है उनको चुनना लेकिन फिर भी वो गुलजार को चुनेंगे और उसके साथ उन्होंने अपने पसंद का गीत भी दिया है। ऐसे ही हमारे कई सारे श्रोताओं ने गुलजार को पसंद किया है। और साथ ही हम बात कर रहे थे साहिल लुधियानवी के बारे में, तो उनके लिए भी कुछ उनके लिखे हुए कुछ नगमे कुछ शेर हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। किसी ने तो लिख दिया कि साहिल लुधियानवी की एक लाइन नहीं बल्कि हर बात उन्हें अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। बहुत सारी बातों के बीच एक बहुत प्यारा शेर आया है कि हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। कितनी बड़ी बात कही है ना। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें साहिल के लिए लिखी हैं।

0: लिखते हैं कि उनका अभी ना जाओ छोड़कर उन्हें पसंद है और ये गीत सभी को पसंद है। हालांकि बहुत असाधारण भावनाएं लिखते हैं और ये एक शायर नहीं, ऐसे कई लोग लिखते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। ये शेर शायद मैं दूसरी बार पढ़ रही हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बता दीजिए ये गीतकार कौन है और इन गीतकार को कितने पुरस्कार मिले हैं, कुछ नहीं बताना, इतना ही बताना है इस गीतकार का नाम और इनको मिले हुए पुरस्कारों के बारे में।
1: मैंने

हम सुन रहे थे मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, और ये सपने सच में गीतकार हमारे लिए चुनते ही है ना, जाने कहां से अपनी कलम में इतनी ताकत लाते हैं और बहुत सुंदर से शब्दों को चुनकर हमारे लिए एक बगिया सजा देते हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सभी गीतकार उन्हें पसंद है, हर

किसी की अलग कला होती है, उनके द्वारा उनके ही मन मस्तिष्क में सुंदर विचारों को कविता का भाव देने की लेखनी से पन्ने पर रची जाती है। पता नहीं कितना समय लगता होगा उन्हें एक रचना पूरी करने में, इसका अनुमान हम साधारण लोग नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल सही बात है, गीतकार फिल्मों में विचार संवाहक कह सकते हैं। कई बार फिल्मों के नाम स्टारकास्ट से फिल्म की कथा वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु गीतों से उसके बोलों से फिल्मों के विषय के बारे में पता चल जाता है। बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है, और ये बात सच है कि जो गीतकार है ना, वो गीतकार पूरी फिल्म का जायजा करा देते हैं, बता देते हैं कि कहाँ फिल्म में कहाँ कौन सा बदलाव हो रहा है, और कई बार तो फिल्म के नाम के गीत भी लिख देते हैं। और एक और बड़ी बात है कि छंदबद्ध करना, यानी उन्हें हिंदी व्याकरण का भी या जिस भाषा में वो गीत लिख रहे हैं उस भाषा की व्याकरण का भी इतना ज्ञान होता है कि वो उसे छंदबद्ध कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से मीटर में बिठा सकते हैं। तो ये बढ़िया बात होती है गीतकारों की। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये जो गीतकार हैं इनका नाम बता दीजिए और इनकी उपलब्धियां बता दीजिए, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये जो फिल्म है ये आनंद फिल्म से है जो हम आपको बता रहे हैं। मुकेश ने गाया, सलिल चौधरी ने संगीतबद्ध किया, और हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये गीत गुलजार ने लिखा है। बिल्कुल सही बताया आपने, और आपने बताया कि गुलजार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, रजनीकंदा के लिए राष्ट्रीय नेशनल पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ये हमारे श्रोताओं ने अलग अलग जगह पर लिखे हैं और वो सब मिलाकर मैं आपको बताते जा रही हूँ। हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें ग्रेमी अवार्ड मिला है, और उसके साथ ही उन्हें साथ में नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्मफेयर अवार्ड्स, 22 फिल्मफेयर अवार्ड मिले हैं, 5 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं। हमारे श्रोताओं ने कितना ज्ञान है आपको, कितनी सारी चीज़ें आप बता देते हैं, और ज्ञानपीठ अवार्ड भी उनके नाम पर है। इतने सारे अवार्ड्स के साथ में हमारे उनके लिखे गीतों को वहाँ तक पहुँचाना, विश्व स्तर तक पहुँचाना, वह भी बड़ी बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सच है कोई एक दो गीतकार में सफ़र सुहाना कहाँ होगा, योगेश जी, माया, गोविंद, सावन कुमार जी, जाने कितने सारे गीत हैं, रोते हुए को हंसाने वाले निदा फाजली जी, और पूरी ही राजा पद्य वद्य करने वाले कैफी आजमी जी। सच बात है कितना कितने सारे लोगों को हम लेकर आएंगे, पर प्रयास करेंगे जितना अधिक ले सके। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ जल्दी से, और ये जो गीत है ये बहुत खूबसूरत सा है, और इस गीत को आपको सुनना है, और इस गीत को सुनने के साथ बताना है कि ये गीतकार कौन है, है ना? और

0: वो भी ऐप से, वाह।
1: फसा अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
4: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: विविध भारती कानपुर पर सुनिए कार्यक्रम आपके संदेश, जिसमें होगी आपकी आवाज और आपकी बात, जहां आपके पत्र, ईमेल और सुझाव बनेंगे कार्यक्रम का हिस्सा। हर महीने के दूसरे बुधवार को शाम 5:45 पर सुनिए आपके संदेश, सिर्फ विविध भारती 103.7 FM पर। तो अपनी प्रतिक्रिया हमें आज ही भेजिए। हमारा पता है केंद्र निदेशक आकाशवाणी, बेना झाबर रोड, कानपुर। हमारा ईमेल एड्रेस है airkansomedia@gmail.com। हमें आपके ईमेल और पत्रों का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी आवाज है हमारी ताकत।

हम सुन रहे थे कन्यादान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नीरज के बोल, गोपाल दास नीरज के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, तो आपने बताया शंकर जयकिशन इसके संगीतकार हैं। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी। इसके साथ हमने कहा था कि आप बताइएगा कि आपको कौन सा क्या पसंद है गोपाल दास नीरज की कलम का, तो हमारे श्रोताओं ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, रचनाकार के हृदय में विषय वस्तु के अनुरूप शब्द ही वैसे स्फुटित होते हैं जिन्हें वो कागज पर तुरंत उकेरना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ही उनका स्वाभाविक स्वभाव हुआ करता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा कारवां गुजर गया उन्हें बड़ा पसंद है और उसके तो बहुत सारे बोल भी उन्होंने लिखे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज की कलम से जो उन्हें शेर पसंद है, अब तो मजहब से कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बहुत बढ़िया। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, ये हमारे श्रोता बताते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं गोपाल दास नीरज के लिखे गीत बहुत पसंद है, शर्मीली और प्रेम पुजारी के गीत जी हमको भी बड़े पसंद हैं। उसके साथ ही हमारे गोपाल दास नीरज के लिए लिखते हैं कि साहित्यकार फिल्मी फिर फिल्मी गीतकार है, कविताएं और साहित्य के साथ वो चले हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता में जो एक बहुत बढ़िया सा शेर, बहुत बढ़िया सी पंक्तियां आई थी गोपाल दास नीरज के बारे में, हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज मेरे पापा को सबसे पसंदीदा कवि हैं, उनके कई कवि सम्मेलनों की रिकॉर्डिंग भी उनके पास में है। जी बिल्कुल। गुलजार के बारे में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि गुलजार ने एक नायाब तरीके से गाना लिखा है जो अपने आप में संगीत का अनूठा गीत बन गया है, जिसमें दो अंतरे में एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग है। बिल्कुल सही बात है, इस गीत के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन पहले और दूसरे अंतरे में सिर्फ शब्दों की जगह भूतकाल और वर्तमान काल का प्रयोग का प्यार को उभारा गया है, और वो गीत है वो शाम कुछ अजीब थी। बिल्कुल सही बात है, ये बढ़िया बात आपने, बढ़िया जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि स्वप्न झरे फूल से गीत शुभे चूल से, जी वही कारवां गुजर गया गीत सबको बड़ा पसंद है। ये जो गीत है इन सब गीतों के साथ में एक बढ़िया सा शेर आया है कि गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। बहुत बढ़िया, ऐसी बढ़िया बातें आप अपने यहाँ पर लिख रहे हैं, हम तक भेज रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, हमारे श्रोता ने लिखा खिलते हैं गुलियाँ खिलके बिछड़ने।

को मिलते हैं दिल यहाँ मिलके बिछड़ने को। बिल्कुल सही बात है, कुछ बातें कटु सत्य होती हैं जो गीतों में हमें ऐसा लगता है कि बड़ी रोमानियत भरी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। जी कभी कभी ये बढ़िया बात लिख देते हैं। साहिल लुधियानी की पंक्तियां लिखते हैं, तुम मुझे भूल भी जाओ ये हक है तुमको, ये उनकी पंक्तियों के बारे में लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार कविता पाठ करने के लिए आए थे गोपालदास नीरज, मम्मी वहाँ पर स्टूडेंट यानी शिष्या थी और इतनी ज़बरदस्त फ़ैन हुई कि उन्होंने मुझे जहरे फूल का गाना सुनाया और रेडियो पर ये उन्हें बड़ा पसंद आया था। यही बात है कि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार देते हैं और वही संस्कार शायद आज आपको विविध भारती के साथ में जोड़कर रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और वो प्रश्न है कि गीतकार परकाया में प्रवेश कर उनके भावों को लिखते हैं। परकाया यानी किसी और व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके गीतों को लिखते हैं, वरना स्त्री के मनोभावों को वो कैसे लिख सकते हैं? प्रश्न बहुत बड़ा है। सच बात है, अगर अगर पुरुष गीतकारों को देखा जाए तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। उसके साथ ही अगर महिलाओं को देखा जाए तो रानी मलिक ने भी चुरा के दिल मेरा कुरिया चली ये गीत पुरुष के लिए लिखा है। कैसे लिखते होंगे जरा विचार करते हैं। तब तक सुनते हैं ये अगला गीत जो बड़ा सुंदर सा है, दोस्ती फिल्म से है ना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं, पर इस सब के साथ में आप बताइएगा मजरूर सुल्तानपुरी की कौन सी रचना है जो आपको मजबूर कर देती है बस पर बस ही उनको सुनने के लिए या उनको समझने के लिए, ज़रूर से बताइएगा। तब तक सुनते हैं ये वाला गीत।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत। हम आपको बता चुके हैं मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और आपसे हमने पूछा था कि बताइए मजरू के बारे में जो आपके दिल में दिल कहता है या आपकी कलम कहती है। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी थी कि वे एवरग्रीन रहे। उन्होंने के एल सहगल के ज़माने से शाहजहां 1946 से लिखना शुरू किया। नौशाद, एस डी वर्मन, ओ पी नैयर से होते हुए आर डी वर्मन, आनंद मिले, जतिन ललित, कयामत से कयामत तक जो जीता वही सिकंदर के तौर तक सक्रिय रहे। इस दरमियान शायद ही कोई संगीतकार होंगे जिनके लिए उन्होंने गीत नहीं लिखे। 5 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने अपनी शायरी को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। कितनी बढ़िया, कितनी उम्दा बात आपने साहिल लुधियानवी के बारे में कही है। तो चलिए अब हम मजरू सुल्तानपुरी के बारे में कही है और अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले हमने आपसे कहा था कि मजरू की कुछ रचनाओं को या किसी भी रचना को जो आप पसंद करते हैं हमारे साथ साझा करें। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि अच्छा पहले लिख चुके हैं ये कि मजरू सुल्तानपुरी उनके पसंदीदा शायर और गीतकार हैं। उनकी सबसे बड़ी बात है कि लेखनी के लिए उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया। जेल में भी रहना पड़ा और उनका गीत लिखा, तुम जाओ कहीं तुमको अख्तियार, हम जाएं कहाँ सजना, उनका पसंदीदा गीत है। बिल्कुल हमारी गौशोता ने लिखा है कि वो नीरज, गोपाल दास नीरज के 2 बार कवि सम्मेलन सुन चुके हैं। एक बार कवि सम्मेलन तो सुबह 4 बजे तक बैठा रहा, नीरज लगभग 2:30 बजे माइक संभालने गए और 4 कब बज गए पता नहीं पड़ा। 1986-91 में गोरखपुर कचहरी क्लब मैदान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बुलावे पर वो आए थे। मजरू सुल्तानपुरी कुंदनलाल सहगर के से लेकर सोनू निगम तक 5 पीढ़ियों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं और सभी सुने हैं उन्होंने, बहुत बढ़िया बात है। दोस्ती फिल्म के लिए वो लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जवां हमारी ना समझा यहाँ कोई मजरूह, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे। क्या बढ़िया बात लिखी है, क्या बढ़िया शेर कहा है। मजरूह के लिए वो लिखते हैं कि गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े प्यार से कर रहा हो, ना बनावट है बस है अपनापन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इतने सारे बातों को हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आपको अगला गीत दे रहे हैं जल्दी से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रहे ना रहे हम करेंगे बन के कली बन के सवाब आगे माफा में। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा सा गीत आपने बताया। लेकिन अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइए इसके गायक कौन है और गीतकार कौन है। हालांकि मैं गीतकार के बारे में पहले ही पढ़ना चाहती हूँ तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीतकार पसंदीदा गीतकार आनंद बख्शी हैं, उनकी रचनाएं पसंद है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जटिल और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बोलचाल की भाषा में गीत लिखते हैं और इनके कई सारे गीत इन्हें पसंद है जिनके बारे में इन्होंने बताया है। और वह कहते हैं आनंद बख्शी की अद्भुत प्रतिभा को सलाम किए बगैर रहा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। अगला गीत सुनिए, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और अगर इनकी कोई रचना पसंद है तो साझा कीजिएगा, स्वागत है।

इसके गायक कलाकार कौन है? हालांकि इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार राहुल देव वर्मन है, और हमने आपसे इसके गायक कलाकार के बारे में पूछा और आपने सही उत्तर दिया, अमित कुमार। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे बहुत मीठे

हिंदी पर पंडित नरेंद्र शर्मा, जावेद अख्तर, कैफी आजमी, डीएन मधोक, शकील बदायूनी, समीर अंजान, निशात कामिल, मनोज मुंतसिर, प्रसून जोशी, कौसर मुनीर, हुसैन हैरी, हसन कमाल, जानिसार अख्तर, रमेश शास्त्री, पुरुषोत्तम पंकज, केदार शर्मा, वर्मा मलिक, अभिलाष, गौहर कानपुरी, रवि कुमार, बरामंकी, अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद किरकिरे, रानी मलिक और जाने कितने सारे अभी गीतकार हैं जिनको आज हमने नहीं लिया है, परंतु क्या है कि अब जो है वो है, समक्ष है। तो आज की इस कार्यक्रम सुरीला सफ़र का अंतिम गीत मैं खुद भी चुनाव नहीं कर पा रही हूँ कि आपको कौन सा सुनवाया जाए, पर ये वाला जो गीत है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। तो उसके पहले ये बड़ा खूबसूरत सा नगमा है जिसकी एक पंक्ति, एक छोटी सी पंक्ति को आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं इस अगले जो आज का अंतिम गीत है उसकी तरफ, क्योंकि इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं।

गीत आप समझ ही गए होंगे कौन सा है. जी बिल्कुल, शैलेंद्र ने भी बहुत अच्छे गीत लिखे हैं और दिल को हृदय को छूने वाले गीत हैं. कभी और किसी दिन सुनाएंगे, पर आज का आज की शाम का यह अंतिम गीत जिसे लिखा है गुलजार ने और सदमा फिल्म से है, सुरेश वाडकर की आवाज़ में, इलैयाराजा का संगीत है. आइए सुनते हैं इस गीत को. आज्ञा दीजिए, शायद आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा हो, खुशियाँ आई हों तो बहुत सारी बधाई. आपका जीवन मंगलमय हो.

गीतकार शैलेंद्र की उस रचना को उधार के रूप में रखते हुए मैं कभी और आपको जरूर सुनाऊंगी। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सुरीला सफर से। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनेस, हिंदी अनुवाद किया है जयंत पात्रीकर ने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 33वीं कड़ी।

बारिसाल की घटना का अंग्रेजी हुकूमत पर बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। निहत्थे लोगों पर इस प्रकार निर्ममता से लाठीचार्ज किए जाने की यह पहली घटना थी। उसके बाद ऐसी ही अनेक छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश राज सत्ता पर शैतान शाही की मुहर लगा दी। इन सब का परिणाम ये हुआ कि बारिसाल अधिवेशन के एक महीने बाद 14 मई 1906 को फुलर को वंदे मातरम शब्दों पर से और गीत पर लगी पाबंदी हटाने की घोषणा करनी पड़ी। ये समाचार मिलते ही बारिसाल अधिवेशन के शिल्पकार अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में 10,000 से भी अधिक जनसमुदाय ने बारिसाल शहर में एक विशाल जुलूस निकाला। सब लोग गा रहे थे, बोलो सिंहो नादेर जय जय राबे वंदे मातरम, उठुक भवे शुनुक सबे मंत्र गंभीरतम जय जय वंदे मातरम।

0: चलो सिंह स्वर में गाते हैं जय जय वंदे मातरम। संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो यह मंत्र वंदे मातरम। इस धीर गंभीर वातावरण में हम पुनः पुनः उच्चार करें जय जय वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: बारिसाल की जनता ने फिर एक बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आमंत्रित किया। जिस भूमि पर आपको अपमानित किया गया उस भूमि को आप स्वयं आकर अपने चरण कमलों से पावन करें, ऐसी विनती अश्विनी कुमार दत्त ने सुरेंद्रनाथ जी को की। फिर एक बार बारिसाल की सड़कों पर लगभग 50,000 लोगों का समूह एकत्रित हुआ। वंदे मातरम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जय, ऐसी घोषणाएं गूंजने लगी। बीएम हॉल में मोताहर हुसैन की अध्यक्षता में हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सत्कार समारोह में गीत गाए।

विवाह पर फुलर ने कोई रोक नहीं लगाई। हालांकि हल्का सा विरोध करने का प्रयास जरूर किया गया, परंतु इस महीने भर में बारिसाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप जो जनक्षोभ पूरे भारत में उमड़ कर आया, उससे फुलर मन ही मन घबराया हुआ था।

0: बारिसाल की घटना की समूचे देश के समाचार पत्रों में कड़े शब्दों में आलोचना की गई। सरकार के समर्थक कहे जाने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया इस अखबार में 28 अप्रैल 1906 को लिखा गया,
1: बारिसाल की इस घटना से राष्ट्रीय स्वाधीनता की जंग पर दूरगामी परिणाम हुए हैं। पुलिस के अत्याचार ने न केवल बंगाल को बल्कि पूरी दुनिया को ही जगा दिया है।
0: बारिसाल की घटना के पांचवे दिन अमृत बाजार पत्रिका में अंग्रेजों को चेतावनी दी गई।
1: बारिसाल की घटना की यदि पुनरावृत्ति हुई तो लोग प्राणों की परवाह किए बिना प्रतिकार करेंगे।
0: द बंगाली इस अंग्रेजी पत्रिका ने लिखा,
1: लोगों के धैर्य की भी एक सीमा होती है। पश्चिम बंगाल की जनता को पीटने के लिए उठी यह लाठी किसी दिन सरकार के ही माथे पर टूट पड़ेगी।
0: क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्थान अरविंद घोष के क्रांतिकारी भाई बारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर में स्पष्ट रूप से लिख दिया,
1: इस अत्याचारी घटना के विरुद्ध भारत की 30 करोड़ जनता के हाथ बल का सामना बल से ही करने के लिए ऊपर उठने चाहिए।
0: हितवार्ता ने लिखा,
1: शस्त्र का उत्तर शस्त्र से ही दिया जाना चाहिए। पकड़े जाने पर एक छोटा सा कीट भी डंक मारता है तो फिर हम इस देश के वासी कब तक अपना संयम बनाए रख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन अब एक नए मोड़ पर आ गया है। हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य रूपी राक्षस यानी अत्याचार करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सजा देकर उनका घमंड नहीं तोड़ा गया तो एक दिन ऐसी आग भड़केगी कि उसे बुझाने के लिए हजारों लोगों का खून बहाना पड़ेगा।
0: मई 1906 को बंगाली इस समाचार पत्र ने लिखा,
1: 10,000 से भी ज्यादा हिंदू मुसलमानों ने बड़ा जुलूस निकाला। इस जुलूस में अल्लाह अकबर और वंदे मातरम दोनों घोषणाओं का जयघोष

0: फुल्लर के अधीन होकर ढाका के नवाब ने इस बारिसाल मामले में सरकार की मदद की थी। नवाब के दादा अब्दुल गनी हिंदू मुस्लिम भेद नहीं मानते थे। दादा की ख्याति भूलकर नवाब ने सरकार की मदद की। बाद में अंग्रेजों द्वारा उनकी लाचारी का फायदा उठाने पर वे जागे। उसके बाद फिर कभी स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध ब्रिटिश राजसत्ता का साथ नहीं दिया। ढाका के नवाब का अपवाद छोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन बारिसाल के निमित्त एक बार फिर अंग्रेजों को हुए। मौलवी लियाकत हुसैन बंगाल के एक सम्माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बंग भंग के निर्णय से उन्हें भी धक्का लगा था। रविंद्रनाथ के राखी बंधन के आह्वान का जवाब देते हुए वे भी इस उत्सव में शामिल हुए। अपने हर कार्यक्रम में वंदे मातरम ये गीत वे श्रद्धा से गाते थे।
1: बारिसाल की घटना के कारण अंग्रेजों की बची खुची छवि भी धूल में मिल गई। कई जुल्मी आदेश अंग्रेजों को वापस लेने पड़े। मीठी मीठी बातें

करके सरकार स्थिति संभालने का प्रयास करने लगी। बारिसाल प्रकरण ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा का विषय बना। वंदे मातरम पर पाबंदी लगाने से ही उस आंदोलन को और अधिक धार मिली और इस पाबंदी के हुक्म से सरकार का ही अधिक नुकसान हुआ। इसका एहसास भारत मंत्री मॉर्ले और वॉइसराय मिंटो को हुआ और फिर एक बार मॉर्ले मिंटो सुधारों के रूप में सुधार का लालच आगे किया गया, पर ऐसे दांव पेचों से कोई भी बदलाव नहीं।

0: वंदे मातरम का प्रभाव पूरे भारत में फैला हुआ था। वंदे मातरम की चिंगारी ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर ही दी थी, अब संविधाएं भी पढ़ने लगी थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलगुरु रह चुके आशुतोष मुखर्जी ने फुलर के खिलाफ वायसराय से शिकायत की। उससे नाराज होकर फुलर ने लॉर्ड मिंटो को अपना इस्तीफा भेज दिया और वो 3 अगस्त 1906 को मंजूर भी हो गया। कर्जन के बाद कर्जन का वरदहस्त प्राप्त अत्यंत अहंकारी अधिकारी फुलर का भी इस्तीफा मिलने के कारण आंदोलनकारियों का बल और बढ़ गया।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघुरूपक श्रृंखला की ये थी 33वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग दिया किरण बंग और समृद्धि नाइक ने, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
2: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
2: राष्ट्रीय सिकल सेल

0: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
3: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की

0: संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, आपकी हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता रहा हो।
1: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग शिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर।

0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे वचन फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में प्रेम धवन के बोल और रविशंकर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत सीमा फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को, जो कि है फिल्म बरादरी।

0: श्री 420 फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं अगला गीत परिवार फिल्म से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ें हैं, शैलेंद्र के बोल हैं और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: दत्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत ऐसी चंद्र तपन राम तत थई राम तत थई राम तत थई।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूँ मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे ये गीत भाई भाई फिल्म से, ये गीता दत्त की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। और सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, आप सबका मंगल हो। प्रणाम, नमस्कार।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: शुक्रवार दिन 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक
2: देव दर्शन धूप।
3: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन धूप।
4: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको टर्मरिक, हल्दी चंदन के गुणों से भरी सुंदर निरोगी त्वचा के लिए

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: इंतजार, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी चीज का, किसी बात का हो या फिर किसी घटना के होने का इंतजार हो, इंतजार थोड़ा मुश्किल काम है ना? तो चलिए इस मुश्किल को आसान करने की कोशिश करते हैं हमारी और आपकी बातचीत से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो सहेली में। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज उठी है और हम बात करते हैं आज कॉल करने वाली हमारी पहली सहेली से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बताइए कौन बात कर रही है इस समय हमसे?
1: मैं शबाना बोल रही हूँ।
0: शबाना जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: उमरी खदाना।
0: उमरी खदाना
1: जी।
0: अच्छा, बताइए क्या करती हैं आप?
1: एक टाइम तो मैं कुछ नहीं कर रही, दुकान पे बैठी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर रखी।
0: तो ये आपकी खुद की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की?
1: हाँ जी, अपनी खुद की है।
0: अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या क्या काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर?
1: मैं तो सिर्फ बेचती हूँ, जैसे सामान होते हैं LED, बिजली पंखे वगैरह, लाइट का टोटल सामान, और सुधार के भी हैं, रिपेयरिंग करते हैं मेरे हस्बैंड आके, हम लेकर रख लेते हैं।
0: अच्छा, तो आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके इस दुकान को चलाते हैं?
1: जी हाँ।
0: तो जब आप दुकान संभालती हैं तो घर पे बच्चे भी अकेले आराम से रह लेते होंगे, क्योंकि इतने समझदार हो गए?
1: हाँ, काफी समझदार है। बड़ा लड़का 16 साल का हो चुका है, 15 में लग चुका है, और छोटा 12 साल में लग चुका है, 12 का हो गया, 13 में लग चुका है।
0: शबाना जी, आप दुकान पर जब संभालती हैं तो उसी वक्त रेडियो भी सुनती हैं?
1: जी हाँ, रेडियो भी सुन लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, टीवी में रेडियो चला लेते हैं।
0: तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओम शांति ओम फिल्म का दीवानगी दीवानगी का मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
0: ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: सहेली बताइए, कौन बात कर रही हैं हमसे?
1: हम नीता मिश्रा बात कर रहे हैं आपसे।
0: नीता मिश्रा
1: जी, आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ नीता जी। मुझे बताइए कि आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: ये हमने लगाया यूपी से, लखीमपुर खीरी से।
0: लखीमपुर खीरी से आप बात कर रही हैं। बताइए लखीमपुर खीरी का मौसम इस समय कैसा है?
1: यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है।
0: अभी तक बारिश के कोई आसार नहीं है?
1: नहीं, बहुत बूंदा बांदी हुई थी कल थोड़ी देर बस।
0: तो जब थोड़ी बूंदा बांदी होती है तो वो तो गर्मी को और बढ़ा देती है, क्योंकि उमस बहुत हो जाती है।
1: बहुत ज्यादा।
0: तो बताइए आपके शौक क्या क्या हैं नीता जी?
1: हमारे शौक हैं गाने सुनना, किताबें पढ़ना।
0: किस तरह की किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं?
1: फिलहाल तो नॉवल अच्छे लगते हैं, जैसे गोदान है, गवन है, ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो है, मैंने लगभग 8-10 तो नॉवल पढ़े ही पढ़े हैं। और बाकी किताबें बढ़िया लगती हैं पढ़ना, जैसे ये लड़कियों वाली आती है, मेरी सहेली है,
0: जो महिला पत्रिकाएं आती हैं वो आप पढ़ना पसंद करती हैं। बाकी आप उपन्यास बहुत सारे, जैसे आपने बताया मुंशी प्रेमचंद जी के अधिकतर उपन्यास आपने पढ़े हैं, बहुत अच्छा साहित्य आप पढ़ती हैं, जिसमें हमें
1: पढ़ना मतलब लगभग तो सभी कुछ छोटे थे तो कॉमिक्स में बहुत पढ़ते थे, कॉमिक्स का जमाना तो गया, लेकिन अब ये किताबें बढ़िया लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जब बचपन में हम थे तो कॉमिक्स का जमाना था और वो भी आपने बहुत पढ़ी हैं। आप गाने सुनने की भी शौकीन हैं, तो किस तरह का संगीत पसंद है आपको? आज के जमाने के जो आज के दौर के गीत हैं वो पसंद करती हैं?
1: आजकल के भी पसंद है, लेकिन पुराने गाने, ओल्ड गोल्ड कहा जाता है, तो पुराने गाने ज्यादा पसंद है, खासतौर से लता जी से।
0: तो उस सुनहरे दौर का लता जी का गाना आपकी पसंद का अगर हम पूछें तो वो कौन सा गीत है?
1: बहुत सारे हैं।
0: आज जो गीत आप सुनना चाहती हैं वो बताइए।
1: मुझे सुनना है मैं हूँ खुश रंगीना, हिना फिल्म का गाना।
0: आपको सुनवाते हैं हिना फिल्म का अभी की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, हम किस सहेली से बात कर रहे हैं?
1: स्वाति विक्रम थोरात।
0: स्वाति जी, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जिला नगर से तालुका पारनेर है, वहाँ से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ, दो बच्चे हैं।
0: आपके बच्चे कितने बड़े हैं?
1: बड़ा बेटा तीसरी कक्षा में पढ़ता है और बेटी 4 साल की है।
0: तो उनके स्कूल शुरू हो गए हैं अभी?
1: स्कूल तो शुरू हो गए हैं अब।
0: और आप रेडियो सुनती हैं, तो कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: रेडियो तो सभी चैनल में सुनती हूँ।
0: अच्छा,
1: जब मौका मिलता है ना तभी सुन लेती हूँ।
0: अच्छा, तो बताइए आज कौन सा किताब सुनना चाहती हैं?
1: मैं बागबान फिल्म का मैं यहाँ तू वहाँ सुनना चाहती हूँ।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का बागबान फिल्म का गीत।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मधुर पारेख।
0: मधुर पारेख, मधुर पारेख आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जयपुर राजस्थान।
0: बड़ा सुंदर शहर है जयपुर।
1: बहुत सुंदर है।
0: यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे देखने वाली चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आप जयपुर में बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
1: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं।
0: तो आपने आगरा में भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल है।
1: जी बिल्कुल, देखा है ताजमहल।
0: और जयपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जयपुर कोई घूमने आए कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं।
1: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आप वहां जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियां हैं
0: जी,
1: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं जैसे कि गोविंद देव जी।
0: तो ये किलों की और मंदिरों की नगरी है एक तरह से जयपुर।
1: जी बिल्कुल।
0: मधुर आप खुद क्या करती हैं?
1: जी मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
0: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
1: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है दरअसल। ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो जो देते हैं वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
0: यानी हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जो कदम रखते हैं वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहाँ उन बच्चों को किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
1: जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमारी माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
0: मधुर आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये
1: जी
0: कितने समय से आप कर रही हैं?
1: जी मैं

0: 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
1: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको।
0: जी बिल्कुल, और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
1: क्या बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एंजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं?
0: जी बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
1: मधुर जी, आप हमें ये बताइए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का।
1: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, हम किन से बात कर रहे हैं इस समय, कौन सी सहेली लाइन पर है?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से मैडम।
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: जी मैडम।
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं मैडम।
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी यही सब बनाते हैं।
0: और कटहल का अचार भी डाला जाता है खाने के अलावा, जो अलग स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं कटहल उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है।
1: हाँ, उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा दीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए, फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें उसका मसाला पूरा डालकर तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के रख दीजिए।
0: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है, वहाँ बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
1: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है,
0: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
1: हाँ कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम तो सुनना चाहते हैं दम दम दिगा दिगा।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते। जी
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं झांसी से बोल रही हूँ, रचना।
0: झांसी से रत्ना जी बात कर रही हैं।
1: जी
0: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: बस मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है,
1: जी मैम।
0: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
1: जी मैम, मेरे तो 20 साल हो गए मेरी शादी को।
0: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी।
1: जी मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए तो इधर ही रहती हूँ।
0: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे शागन फिल्म के

0: सखी सहेली कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।
1: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
4: हेलो सहेली।
3: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात कर रही हैं?
4: जी मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
3: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता अपने बारे में कुछ बताएं कि आप क्या करती हैं?
4: जी मैं टीचर थी लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
3: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है
4: जी, अभी हाँ छोड़ा है मैंने। अभी मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
3: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है।
4: हाँ हाँ जी।
3: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
4: अभी वो 12th में है।
3: 12th में है
4: जी, 12th में है अभी।
3: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं। अभी आपको

0: लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
1: नहीं, वैसे तो जरूरत नहीं, उससे लगता है कि मैं काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है, अकेला ही रहता है वो, तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं फिर। वो अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज में।
0: बिल्कुल सही बात है, ये ऐसी उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है, तो बच्चों में जो संस्कार पड़ते हैं, खास तौर पर वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं, माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से बच सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब आप खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
1: हाँ, पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना, तो स्ट्रेस में रहता है वो। घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
0: इसके
1: अभी
0: अलावा और
1: गिटार सीखने लगी हूँ।
0: अच्छा, गिटार आप सीख रही हैं?
1: जी अभी स्टार्ट किया है, और राइडिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
0: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो उस पर चढ़ना ही अपने
1: हाँ
0: आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं, तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
1: सीखी नहीं, लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकाल के जाती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इश्यू है, मतलब बहुत ज्यादा इश्यू है, लेकिन शौक बचपन से है तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं। कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
0: रेडियो आप सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली, वो तो सुनती हूँ, और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
0: निकिता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुन पाए। तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बेटा फिल्म का सॉन्ग सुनना है, सजना मैं तेरी तू मेरा।
0: सुनवाते हैं आपको बेटा फिल्म का, आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं पलक अहरवार बात कर रही
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से
1: हूँ।
0: कॉल
1: या
0: लगाया? अपने शहर का नाम बताइए।
1: बुगावड़ी।
0: बुगावड़ी।
1: यस मैम।
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम, वहीं तहसील खुरई पे साइड है बुगावड़ी।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गांव।
1: यस
0: तो आपका जो गांव है, वहां पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से 8वीं क्लास तक है।
0: 8वीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है, तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के लिए?
1: तो यही तो है पथरिया, तो वहीं पर पढ़ती हैं।
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: साइकिल 3 किलोमीटर दूर है।
0: तो 3 किलोमीटर जाने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है, या कुछ सुविधा है जाने आने की?
1: नहीं
0: वहाँ
1: मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
0: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
1: या मैम,
0: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: मैं 9th में आ गई हूँ।
0: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद हैं आपको?
1: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी 4 बहनें हैं और एक भाई है।
0: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं।
1: हाँ मैम।
0: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
1: मैम अभी 1 साल पहले। यस
0: 1 साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं।
1: मैम।
0: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
1: मैम आज की फनकार कार्यक्रम।
0: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
1: यस मैम।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: धड़क टू का प्रीत गाना सुनना है।
0: पलक आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपने शहर का जिस तरह से आपने परिचय दिया है ये अपने आप में बड़ा रोचक है।
1: जी मैम, आप ही लोगों को सुन सुन के मैम हमने भी बोलना सीखा है, और मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम, और
0: आपने
1: साथ में जानकारियां भी मिलती रहती हैं, और प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलते हैं मैम।
0: आप क्या करती हैं ये बताइए।
1: मैम मैं घर पे रहती हूँ, और घर पे रह के घर के काम भी करती हूँ, और साथ में आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ कॉल के माध्यम से।
0: रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा शहर है रायबरेली।
1: मैम रायबरेली तो ठीक ठाक शहर है, और मैं बताना चाहूंगी मैम, मेरा गांव सीवर के पास में पड़ता है, तो मेरे यहाँ जो सीवर है यहाँ पे एक राजा का महल है, जहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, गानों की शूटिंग रहती है, तो यहाँ पे मैम बहुत से लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, और यहाँ
0: आपने
1: पर मैम कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है, आप फ्री में घूम सकते हो।
0: और आपके शौक क्या क्या हैं।
1: मैं मुझे तो सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना, और मतलब सॉन्ग को गाना, मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
0: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है? अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहानी है।
0: प्रतिभा रहानी जी, आप कहाँ रहती हैं? किस शहर से आप बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं पुणे से हूँ, राजगुरु नगर।
0: प्रतिभा जी, अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योग आश्रम नाम से। वहाँ पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहां पे आप एज वॉलेंटियर जाती हैं,
1: हाँ
0: तो ये एक योग आश्रम है जैसा कि आप सुनने से हमें पता लगा, तो यहाँ पर आप
1: हाँ
0: कुछ सिखाती हैं, करवाती हैं?
1: हाँ वहाँ पे फ्री में योगा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ। और वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग, क्रिया योग ध्यान है, और शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म, कायाकल्प, ऐसे भी शिविर होते हैं।
0: आप किस तरह
1: और
0: की सेवाएं यहाँ पर देती हैं?
1: मैं वहाँ पे योगा सिखाती हूँ, और जो शिविर होते हैं कायाकल्प पंचकर्म, वहाँ पे सेवा देती हूँ।
0: आपको पता है अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है,
1: हाँ,
0: तो हमारी सखियों को बताएं कि महिलाओं के लिए योग किस तरह उपयोगी है और उनके जीवन में ये क्यों जरूरी है?
1: तो योगा हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जी
1: जैसे हेल्थ के लिए तो, फिजिकल फिटनेस के लिए तो अच्छा है ही, पर अभी हम जैसे देख रहे हैं कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है या मेंटल हेल्थ जिस तरह खराब होती जा रही है, तो हमारे लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। तो उसके लिए योगा थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग अगर हम थोड़ा योगाभ्यास प्राणायाम करेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें।
0: क्या योग के जरिए कुछ समस्याएं हैं उनसे भी निजात हो पाती है?
1: हाँ, तो हमारा जो मेंटल स्टेट है जो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया है, तो हम जब थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन लेने का तरीका वो चेंज होने लगता है, मेंटल स्टेबिलिटी आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है, और अपने आप एहसास होने लगता है कि हम आनंद में रह सकते हैं, तो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जब हम खुशी में होते हैं तो अंदर से खुश होते हैं।
0: तो योग हमें ये सारी चीजें सिखाता है,
1: हाँ
0: और योग के साथ आप ध्यान के शिविर हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं और लोगों को उसका भी प्रशिक्षण देती हैं। और
1: हाँ
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे स्वामी मोदी का पल भर में क्या हो गया ये सॉन्ग सुनना है।
0: बड़ी खूबसूरत पसंद है आपकी, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का स्वामी फिल्म का गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि वे सखियां जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, एक और नंबर है 28687088, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं HR पाटले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
5: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खेल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट

होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसती खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती।

0: अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध से बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं।
1: जिंदगी कैसी है पहले।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाहती हूं, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहां, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो

बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूँ।

से घबरा कर उसने उनका फोन उठा लिया था और सब देखते ही मानो उसकी विश्वास की दुनिया बिखरती ही चली गई। साथ में ही अपने फोन में सुरक्षित उसके पापा अरुण की उस दूसरी स्त्री के साथ की सारी फोटो और उनके फोन के चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगी। ये सब सुनकर अनुभा एकदम स्तब्ध रह गई। स्वयं को मजबूत करती उसने माँ को समेट लिया। माँ, सबसे पहली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत सशक्त हैं। आप ना तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि 1.5-3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रही और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए, और कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी माँ नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है, पर माँ मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही हैं। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है? मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहां जाना हो चली जाऊं, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूं।

0: झुकती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा, जो पास के कमरे से सब देख रही थी, वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर, परिवार, समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन मिल गया तुमको? अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर, हर सुख दुख में उसका साथ देने पर, उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए। अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला। क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़प कर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मेरे धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई ना कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई ना कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा को फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तलखी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो, तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो, वो भी अपने ही पापा को? कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसके प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभा चीखी तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुंचता ही होगा। अनुभा की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं

जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र। आप सुन रहे हैं एफएम 103.7 पर। गुड इवनिंग कानपुर। इस प्रोग्राम के लिए बस भाई थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

दिन भर की भाग दौड़ दोस्तों अब धीरे धीरे शाम की नरम रोशनी में ढल रही है। सूरज भी जनाब अब धीरे धीरे अपनी किरणें समेट रहा है। सड़कों की रफ्तार अब घरों की ओर चल पड़ी है। जी हाँ, घरों की ओर मुड़ रही है रफ्तार। और शाम के 5 बज चुके हैं और इस वक्त आज मैं मालिनी यानी मुस्कुराती मालिनी आ चुकी हूँ स्टूडियो में दिन भर की महत्वपूर्ण हलचल के साथ। सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम में।

जी हाँ, ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र FM 103.7 पर आपने ट्यून इन किया है और ये है आपका अपना पसंदीदा चैनल।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

जी हाँ, 19 जून की बहुत ही खूबसूरत सी ये शाम शुरू हो चुकी है। और दोस्तों आपको बता दें कि आज शुक्रवार है, 19 जून, बड़ी ही खूबसूरत सी शाम है आज की। कुछ ही वक्त के बाद यानी लगभग शाम 7:05 पर सूर्यास्त भी हो जाएगा। दिन और रात तो अपने समय पर आते जाते ही रहेंगे और हम भी वक्त के साथ आपके मनोरंजन के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स 11 तक आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में क्या वक्त हुआ है इस समय आपको बता देते हैं। स्टूडियो की घड़ी में बजे हैं शाम के 5:05 और ये हुए पूरे 50 सेकेंड।

और इस समय प्रोग्राम चला है गुड इवनिंग कानपुर। गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम के बाद शाम 5:45 पर आज इनसे मिलिए, वे आप सुनेंगे योग प्रशिक्षक राहुल यदुवंशी से अतीक सिद्दीकी की बातचीत, विषय होगा जीवन में योग। शाम 6:30 पर आनंद लीजिएगा गाने तराने प्रोग्राम का। और शाम 6 से विविधा में आज का आकर्षण होगा राग रंग। जयमाला कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 7 और शाम 7:45 पर इंद्रधनुष में आज महकेगा गीतों व गजलों का गुलदस्ता। 8 हवा महल प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा और 8:15 पर चित्र लो। रात 9 से सुनिएगा आपकी फरमाइश, छाया गीत का प्रसारण समय होगा रात 10 से। और रात 10:30 से सुनिएगा प्रोग्राम ढलती जाए रात। रात 11 तक कनेक्ट रहिए आकाशवाणी के कानपुर केंद्र के साथ FM 103.7 पर और एंजॉय करते रहिए प्रोग्राम्स को। फिलहाल तो बारी एक खूबसूरत से गाने की।

गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 103.7 पर आकाशवाणी के कानपुर केंद्र से। और गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम में अब नजर डालेंगे आज के दिन की खासियतों पर, यानी कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए चलेंगे इतिहास के पन्नों में। June 19, 1947 को मशहूर ब्रिटिश भारतीय लेखक और उपन्यासकार जो है सलमान रश्दी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आज ही के दिन पहला फादर्स डे वॉशिंगटन में मनाया गया। डास कैपिटल के लेखक और समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स का विवाह आज ही के दिन सन 1843 में हुआ था। और आज ही के दिन सन 1981 में भारत ने अपने भू स्थैतिक उपग्रह एप्पल का सफल परीक्षण किया, यानी कि सफल प्रक्षेपण किया। आज है 19 जून और आज हम एक बहुत खास दिन मना रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय पठन दिवस। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। साल 2017 में भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को आधिकारिक तौर पर मनाया जाना घोषित किया। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को, विशेषकर युवाओं को और छात्रों को, जी हाँ, उन लोगों को में किताब को पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और साक्षरता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो फिलहाल अब एक बार फिर से हम बढ़ते हैं एक खूबसूरत से गाने की ओर।

दोस्तों ये जो सॉन्ग है ना, इस सॉन्ग को सुनकर डांस के शौकीनों के पैर जरूर थिरक रहे होंगे। मैंने सच कहा ना, डांस ना बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होता है और डांस के लिए हमारी बॉडी तभी फ्लेक्सिबल होती है जब अंदर से यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और अंदर से हमें स्ट्रांग बनाता है योग। तो चलिए योग की जब बात चलिए तो आपको बता दें, देश आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटा हुआ है और योग को हमें अपनी दिनचर्या का पार्ट जरूर बनाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 यानी 21 जून को मनाया जो जाएगा, उसका मेगा आयोजन अब की कोलकाता में होगा। भारत के प्रधानमंत्री भी इस मेगा आयोजन में शामिल होंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि योग को हमें अपनी दिनचर्या का पार्ट क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि योग से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी कि हमारे शरीर को योग ऊर्जावान बनाता है। दोस्तों देश में जो है सतत नशा मुक्त भारत अभियान की भी शुरुआत 15 अगस्त 2020 से हो चुकी है और इस अभियान का हिस्सा बनकर हमें देश का जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज भी अदा करना जरूरी है। अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए थोड़ा सा आपको बता दें कि मुख्य उद्देश्य है युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खेत और किसान दोनों को सुरक्षित और समृद्ध बनाना है। और फिर से देखिए बातें हो रही हैं, जब योग की बात हुई है तो चलिए एक योग एंथम सुन लेते हैं।

दोस्तों, भारत वर्ष में 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब की मनाया जाएगा। योग दिवस की जब बात चल रही है तो एक खास बात और बता दें कि योग दिवस की इस बार की जो थीम है, योग फॉर हेल्दी एजिंग, जी हाँ, ये थीम है। और 21 जून के दिन की एक और बहुत ही बड़ी खासियत है, वो ये कि धरती पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन भी होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है 21 जून को। आइए जानते हैं इसके पीछे की खगोलीय घटना क्या है। साल 2026 का 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। खगोलीय गणना के अनुसार 21 जून के दिन भारत में इस बार दिन की अवधि जो है 13 घंटे 58 मिनट की होगी। और इस दिन के बाद सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर अपनी यात्रा शुरू भी कर देगा। इसे विज्ञान की भाषा में ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। और इस घटना के पीछे अहम खगोलीय और वैज्ञानिक वजहें भी हैं। वो क्या है, आइए ये भी थोड़ी सी बता देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी इसे बेहद खास माना जाता है। और इसकी जो वजहें हैं इसीलिए खास है क्योंकि सबसे बड़ा दिन होता है। फिलहाल तो एक खूबसूरत सा गाना पहुंच रहा है आप तक।

जी हाँ, मैं घड़ी को देख रही हूँ, घड़ी लगातार टिक टिक टिक टिक करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। प्रोग्राम में चलिए घड़ी के टिक टिक के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे, और अब शहर की अपडेट से भी आपको रूबरू करवाते हैं, स्पेशली कानपुर के। तो चलिए कानपुर आईआईटी की अपडेट के बारे में हम आपको बता देते हैं। आईआईटी कानपुर के कैंसर सेंटर को मदद करेगा मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। दोनों के बीच अहम समझौता हो चुका है। सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल मेन गंभीर सुरक्षा खामियों का पता लगाने के लिए 19 वर्षीय, जी हाँ, खामियों का पता लगाने वाले इस बच्चे ने खामियों का पता भी लगाया, 19 वर्ष का ये बच्चा है। तो 19 वर्षीय निसर्ग अधिकारी को मिली है आईआईटी कानपुर की बड़ी जिम्मेदारी। क्या है ये जिम्मेदारी आइए आपको बता दें। आईआईटी कानपुर के C3I हब में इनको जो है OSINT यानी कि ओशन और थ्रेड इंटेलिजेंस इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस खुशी को हम भी सेलिब्रेट करते हैं एक खूबसूरत से गाने के साथ।

0: आकाशवाणी से आप सुन रहे अपना पसंदीदा चैनल 103.7 एफएम पर विविध भारती का कानपुर केंद्र और प्रोग्राम चल रहा है गुड इवनिंग कानपुर।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: वेलकम बैक वंस अगेन टू द शो गुड इवनिंग कानपुर। प्रोग्राम चल रहा है विविध भारती के कानपुर केंद्र से 103.7 एफएम पर और प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आरजे मालिनी, बोले तो मुस्कुराती मालिनी।

जी हाँ, गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम में अब लेटेस्ट अपडेट के साथ खेल जगत में चलिए चलते हैं। आपको बता दें कि आज से शुरू हो रही है 26वीं सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप और ये प्रतियोगिता जो है 24 जून तक चलेगी। प्रतियोगिता दिल्ली के भारत मंडपम यानी कि प्रगति मैदान में 19 जून से यानी कि आज से शुरू हो चुकी है और पहली बार भारत इस ऐतिहासिक महाद्वीपीय फेंसिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्रिकेट मैच की अपडेट भी शेयर जरूर करेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 20 जून यानी कि कल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। और दोस्तों 17 जून की अगर हम बात करें तो 17 जून को जो है खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से करारी शिकस्त दी थी, जिसमें कि शुभमन गिल ने शानदार शतक चढ़ा था। फिलहाल तो आने वाला कल क्रिकेट प्रेमियों को खुशी दे, इसी उम्मीद के साथ आज का ये मेलोडियस सा सॉन्ग लेट्स एंजॉय।

और दोस्तों वक्त को देख रहे हैं तो वक्त अपने ही धुन में आगे बढ़ता जा रहा है। और चलते चलते चलिए अब आपको मौसम की अपडेट से भी रूबरू करवाते चलें। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं, किंतु वर्षा की कोई संभावना नहीं है और लू का प्रकोप भी जारी रहने के आसार हैं। और बात करें अगर तापमान की तो जनाब अधिकतम तापमान जो है लगभग रहने वाला है 41.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री। हवा की औसत गति जो है 3.2 किलोमीटर/घंटा रहेगी और दिशा होगी उत्तर से पश्चिम। और फिलहाल अब गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम से मैं मालिनी इजाजत चाहूंगी, मिलूंगी इनसे मिलिए प्रोग्राम में एक गाने के बाद। तो आपसे यही गुजारिश करूंगी, आपसे यही कहूंगी कि सुनते रहिए 103.7 FM पर विविध भारती का कानपुर केंद्र। और अगला प्रोग्राम है इनसे मिलिए।

0: ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र। आप सुन रहे हैं FM 103.7 पर।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आइए सुनते हैं योग प्रशिक्षक राहुल यदुवंशी से अतीक सिद्दीकी की बातचीत। विषय है जीवन में योग।
2: इनसे मिलिए कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं

0: को अतीक सिद्दीकी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आगामी 21 जून को हम मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज का हमारा विषय भी योग से संबंधित है, जीवन में योग। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक राहुल यदुवंशी जी को, जो पिछले 10 वर्षों से योग संबंधी सेवाएं दे रहे हैं। तो राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में।
1: सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार, आकाशवाणी कानपुर का बहुत बहुत आभार।
0: राहुल जी, आप लोगों को योग सिखा रहे हैं, उनकी जीवन शैली बदल रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपके जीवन में योग की शुरुआत कैसे हुई?
1: जी, आजकल के दौर में हर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति अवेयर होता है। जब मैं 17-18 साल की जब मेरी आयु थी, तो उस समय मैं थोड़ा सा क्या था कि मेरे अंदर एक अध्यात्म के प्रति रुचि थी, तो कुछ एक डायरेक्शन एक की कमी थी और थोड़ा सा एक विजन के तहत मतलब हम काम नहीं कर पाते थे। तो उस दौरान मैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से मिला और योग ध्यान की मेरे अंदर एक प्रेरणा जागृत हुई और मैंने अपने जीवन में योग को उतारा और मैंने अध्ययन किया। और अब मैं पिछले कई सालों से 10-12 वर्षों से इस योग ध्यान की विधि को, प्राचीन विधा को मैं आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत पूरे भारत देश में मैं काम कर रहा हूं।
0: जी, आशा है आप इस तरह लगातार काम करते रहेंगे और लोगों के जीवन शैली में बदलाव आएंगे। अब आप हमें ये बताइए आसान भाषा में कि योग क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या विशेष महत्व है?
1: जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है सर। योग का मतलब होता है कि जोड़ना। योग ये बहुत ही प्राचीन विधा है, पद्धति है। हमारा शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चेतना, ये सारा एक लयबद्ध हो जाए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हम इसके अंतर्मुखी चेतना का हमारे विकास होता है, जागृत होती है और मानसिक और शारीरिक रूप से योग हमारे जीवन में काम करता है।
0: जी, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि हमें योग को अपने जीवन शैली में शामिल क्यों करना चाहिए, आखिर क्यों करें हम लोग योग?
1: जैसा कि भारत सरकार और ये हम जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तो विश्व के कई देशों ने इसको माना है, शामिल किया है। तो योग क्यों महत्वपूर्ण है? प्राचीन अगर देखा जाए तो इतिहास में जो वर्णन है, 5000 वर्ष पूर्व योग की जो प्राचीन विधा चला आ रहा है, लेकिन अब इसकी एक अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ी है। तो जब लोगों ने इसका अनुभव किया है योग को, जो जैसा कि मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है, लोग भी इसको देख रहे हैं, अगर देखें तो हमारा बहुत सारी चीज़ें हैं, मानसिक रूप से बहुत सारी बीमारियाँ होती, शारीरिक रूप से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तनाव होता है। तो उसकी अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा अगर समय देते हैं, योग को अपनाते हैं, दैनिक दिनचर्या में अगर शामिल करते हैं, तो शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं। इसके लिए सभी को योग करना चाहिए, ये मेरी सबसे अपील भी है।
0: जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण योग को किस तरह से देखता है, अगर आप ये बताना चाहें?
1: जी बिल्कुल सही बात है, अगर साइंटिफिक तरीके से हम देखें तो इसका योग का रिसर्च भी हुआ है। जितने भी आसन है, अगर पतंजलि योग सूत्र में जितने भी आसन दिए गए हैं, तो उनका साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गेन्स पे ये सारे आसन काम करते हैं और वो बीमारियों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। तो योग अपने आप में वैज्ञानिक है, अगर देखा जाए सारे आसन प्राणायाम सारे वैज्ञानिक हैं, तो वो हमारे बॉडी पे अलग अलग ऑर्गेन्स पे काम करते हैं।
0: जी, इसीलिए योग दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी दी गई है। मेरा अगला सवाल यह है कि अष्टांग योग क्या होता है?
1: जी जी बिल्कुल, ये बहुत सुंदर प्रश्न है और अष्टांग योग से ही, क्योंकि सारा जो योग है वो अष्टांग योग में ही समाहित है। इसके 8 लिम्स होते हैं, जैसा कि हम पहले उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 लिम्स होते हैं। तो यम के भी 5 प्रकार होते हैं, फिर नियम के भी 5 प्रकार होते हैं। तो जब हम आसन से चलते हैं और समाधि तक की एक यात्रा होती है, रीच टू गो समाधि, तो योग को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें यम को फॉलो करना होता है, फिर नियम को फॉलो करना होता है, उसके बाद हम आसन पे आते हैं, फिर प्राणायाम पे आते हैं, फिर प्रत्याहार होता है, फिर धारणा होती है, फिर ध्यान होता है, उसके बाद हम समाधि की अवस्था में जाते हैं। तो इसका अगर हम और डीप में बात करेंगे तो ये बहुत ही मतलब विस्तृत प्रश्न है। तो संक्षिप्त शब्दों में यही है, समाधि के एक अवस्था में जाने के लिए यम से लेकर के समाधि तक की यात्रा है। तो उसके बीच में 8 लिम्स होते हैं, 8 अंग, 8 प्रकार के रूप में इसको अष्टांग योग को वर्णित किया गया है।
0: जी, क्या कोई विशेष समय होता है योग को करने का?
1: देखिए, सबसे पहले तो इस थोड़ा खाली पेट होना चाहिए, है ना। तो 2 से 2.5 घंटे का गैप बहुत

0: आवश्यक है अगर हम प्रॉपर योगाभ्यास और प्राणायाम कर रहे हैं तो। वैसे तो ऐसा कुछ समय नहीं निर्धारित है, रात में नहीं करना चाहिए। अगर प्रातःकालीन इसको करते हैं तो इसके थोड़े फायदे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि एक हम वातावरण के साथ एक कनेक्ट हो पाते हैं। और वैसे अगर आपके पास नहीं समय है तो आप रात में ना करें, और शाम के समय या थोड़ा खाली पेट होना चाहिए, बस 2 से 2.5 घंटे का। वैसे तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर प्रातःकालीन करते हैं आप 5 बजे से लेके 10 बजे तक अगर इसका अभ्यास करें तो ज़्यादा सुंदर रहेगा।
1: और क्या इससे भी कोई प्रभाव पड़ता है कि हम योग घर के अंदर कर रहे हैं या खुले आसमान के नीचे कर रहे हैं?
0: ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा क्या है कि एक स्वच्छ वातावरण का एक माहौल होना चाहिए, एक शांति का माहौल होना चाहिए, इसलिए उसको ऐसे बोला जाता है। बाकी आप अगर खुले में कर रहे हैं तो एक खुले वातावरण की एक वायु, एक ऊर्जा होती है तो वो भी हमको मिलती है, वो भी हमारे जीवन मतलब शरीर पे उसका भी प्रभाव पड़ता है।
1: जी, और क्या किसी विशेष आयु वर्ग के, क्या बच्चे भी कर सकते हैं या बुजुर्ग कर सकते हैं, या सभी के लिए योग बराबर प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर?
0: जी, ये बिल्कुल सब भ्रांतियां हैं कि योग एक अवस्था के बाद करना चाहिए। अब तो देखा इतना ट्रेंड चल रहा है, किड्स योगा भी होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। किसी भी आयु वर्ग के लिए, सबके लिए योग बहुत ही आवश्यक है। बच्चों के लिए तो और अच्छा होता है अगर वो अल्पायु में इसका अभ्यास स्टार्ट कर देंगे तो उनका ब्रेन पावर और मेमोरी पे बहुत फर्क पड़ता है। उनका इंट्यूशन लेवल जो होता है, प्रज्ञा शक्ति होती है, वो बहुत बढ़ती है। उनका IQ लेवल भी बढ़ता है अगर योग का अभ्यास शुरुआत करेंगे।
1: जी, हम इस इंटरेस्टिंग बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को अपनी पसंद का कोई एक गीत सुनवा दें।
0: देखिए, गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन योग पे चर्चा हो रही है तो मैं चाहूंगा कि जो एक केदारनाथ मूवी का एक गीत है,
1: जी,
0: नमो नमो हे शंकराय, तो वो तो क्या है कि प्रकृति से हमको कनेक्ट करता है और नेचर के साथ हमें थोड़ा सा अध्यात्म की ओर भी ले जाने का, और यूथ के लिए काफी ट्रेंडी भी है।
1: जी, आइए सुनते हैं योगाचार्य राहुल जी की पसंद का ये गीत।

0: सर, हम बातचीत कर रहे थे योग के बारे में और योग से क्या फायदे हैं हमारे शरीर के लिए। क्या इससे कोई मानसिक फायदे भी होते हैं, मन मस्तिष्क या आत्मा की शांति के लिए भी क्या योग किया जाता है?
1: देखिए,

0: जीवन में हम जो भी करते हैं वो शांति के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं,
1: जी
0: हैप्पीनेस के लिए करते हैं। तो जब हमारे हैप्पीनेस नहीं होती तभी हमारा उसका मन पे प्रभाव पड़ता है, तो तनाव आता है।

0: होता है
1: जी। आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, तनाव और व्यस्तता लोगों की बढ़ रही है, लोगों के शेड्यूल काफ़ी बिजी हैं, तो उनकी तनाव भरी ज़िंदगी के बीच में योग कितना कारगर साबित होता है उनके लिए?
0: मैंने तो इसका खुद भी अनुभव किया है और अब तक मैंने पूरे भारत में इसकी हजारों कार्यशालाएं भी ली हैं। मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ही मैंने वर्कशॉप ली हैं, तो मैंने देखा है कि विद इन 15 मिनट और 20 मिनट में प्राणायाम और ध्यान के बाद उनके मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। और अगर इसका अभ्यास करेंगे, कुछ कुछ प्राणायाम के अभ्यास होते हैं, मेडिटेशन की जो टेक्निक्स होती हैं, तो अगर इनको हम लोग फॉलो करते हैं तो होल पूरा हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका प्रभाव पड़ता है और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम इससे स्वस्थ रहते हैं
1: जी। हमें किन बेसिक आसनों से शुरुआत करनी चाहिए जो लोग नए हैं योग करना चाहते हैं? आसान से कुछ आसन बता दीजिए जो वो कर सकें।
0: देखिए, जो विग्नर्स लोग होते हैं अगर योग की शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले तो 21 जून का जो कॉमन योगा का जो प्रोटोकॉल है उसमें बहुत ही आसान से सिंपल से आसन है, उसका PDF जो दिया हुआ है। तो अगर जिन्होंने योग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो देखिए, सबसे पहले बॉडी वार्म अप जो सूक्ष्म जो व्यायाम होते हैं उनसे आप उसका प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ खड़े होने वाले जो आसन होते हैं, ताड़ आसन हो गया, हस्तपाद आसन हो गया, त्रिकोण आसन हो गया, वृक्ष आसन हो गया, इनकी आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार को भी इसको अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो एक सन सल्यूशन होता है वो होल बॉडी के लिए एक्सरसाइज होती है। इसके बाद कुछ लेटने वाले भी आसन होते हैं तो बहुत इफेक्टिव आसन होते हैं, तो मंडूक आसन हो गया, तो ये हमारे डायबिटीज पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। बाल आसन हो गया, चाइल्ड पोज हो गया, शशांक आसन हो गया, ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और फिर इसके बाद प्राणायाम आता है, तो प्राणायाम में आप लोग कपाल भांति है, नाड़ी शोधन है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, इसको भी शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप जितना आपके पास समय है आधे घंटे या एक घंटे का अपने जीवन में इसको शामिल कर सकते हैं
1: जी। 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाने वाले हैं, उसके लिए आपका क्या संदेश है?
0: मेरी सबसे यही गुजारिश है, अपील है, निवेदन है कि 21 जून को तो हम लोग योग दिवस मना रहे हैं, बहुत सारा प्रचार प्रसार हो रहा है, तो योग केवल योग दिवस तक ही सीमित ना रहे, इसको हम अपने रूटीन में शामिल करें, अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, अपने जीवन में शामिल करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तभी ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक और मानसिक रूप से भी। और इस बार की जो थीम भी है कि स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, तो हम जो एक आने वाला हमारा जो एक समय है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ रही है, तो जब हम अभी से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो वृद्धावस्था होगी, आने वाला जो समय होगा, तो हम स्वस्थ तरीके से हम अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। तो मेरा सबसे अपील है, गुजारिश है सभी श्रोताओं से कि योग दिवस के अवसर पर ये हम संकल्प लें कि अपने जीवन में इसको उतारें, अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं
1: जी। तो राहुल जी, आपने अपने अनुभव और ज्ञान से योग की बारीकियों को इतनी सहजता से समझाया और हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी को मेरा प्रणाम।
2: इनसे मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे योग प्रशिक्षक राहुल यदुवंशी से अतीक सिद्दीकी की बातचीत। विषय था जीवन में योग।
3: ये आकाशवाणी है, विविध भारती का कानपुर केंद्र। आप सुन रहे हैं FM 103.7 पर।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
6: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती।
1: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती।
2: विविधा में आज बारी है राग रंग की। राग रंग प्रोग्राम के साथ मैं मालिनी आ चुकी हूँ स्टूडियो में और आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। और इस कार्यक्रम में जो पहली आवाज आप तक पहुँच रही है वो है शोभा गुरुटू की। शोभा गुरुटू की आवाज में आइए सुनते हैं ये ठुमरी।

ये थी शोभा गुट्टू की आवाज। अब जो दूसरा राग रंग प्रोग्राम की जो दूसरी आवाज आप तक पहुंच रही है वो है लक्ष्मी शंकर की आवाज। तो चलिए सुनवाते हैं आपको लक्ष्मी शंकर की गाई ये कजरी।

ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र, आप सुन रहे हैं FM 103.7 पर। और अभी विविधा में आपने आनंद लिया कार्यक्रम राग रंग का। अब अगला कार्यक्रम है गाने तराने। तो गाने तराने के साथ बस हम आ चुके हैं स्टूडियो में फिलहाल, तो आप कीजिए गाने तराने प्रोग्राम का इंतजार।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज।

0: तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते। और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

तो दोस्तों आप तैयार हैं गाने तराने प्रोग्राम के साथ, हम आ चुके हैं स्टूडियो में। ये आकाशवाणी एफएम 103.7 पर आप सुन रहे विविध भारती का कानपुर केंद्र। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शो गाने तराने। मैं गाने तराने के साथ मुस्कुराती मालिनी। मुस्कुराहट की खुशबू को आप तक पहुंचाने के लिए मैं स्टूडियो में आ चुकी हूं, आपको थोड़ा झुमाने, थोड़ा गुदगुनाने और मन को फ्रेश फील कराने। एक बात बताऊं, जब मन खुश होता है ना तो पैर किसी भी फास्ट म्यूजिक पर अपने आप थिरक उठते हैं। जी हाँ, 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं। आपको बता दें कि डांस और योगों का खूबसूरत रिश्ता होता है। डांस शरीर को लय देता है जबकि योग शरीर को संतुलन देता है। तो दोस्तों चलिए प्रोग्राम में आज बात करते हैं फिल्मी नृत्य शैलियों की रंग बिरंगी यात्रा की, यानी कि डांस और योग के संगम की।

बिल्कुल जनाब, बेफिक्र होकर नाचिए और बिंदास एंजॉय करिए, क्योंकि गाने भी ना बड़े खूबसूरत हैं। और आज के प्रोग्राम की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक बात आपको बता दें, क्या है आज के प्रोग्राम में ना, हर अंदाज का डांस हमारे साथ है। क्लासिकल भी है, फोक भी है, बॉलीवुड के साथ थोड़ा सा कैबरे का रंग भी है। क्लासिकल डांस की गरिमा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले करेंगे, क्योंकि भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या कुचिपुड़ी, इन सभी नृत्यों में शरीर का संतुलन और एकाग्रता उतना ही जरूरी होता है जितना कि योग में, यानी कि हर मुद्रा में ध्यान, हर कदम में साधना। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में सच कहें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है ना, वो चलते फिरते योग जैसी ही विधाएं हैं।

जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा डांस किया था इस पे वहीदा रहमान जी ने। और जब ये गाना बजता है ना, तो वाकई में उनका डांस जो है आंखों के सामने नुमाया हो जाता है, यानी कि उनकी भाव भंगिमाएं, जो नृत्य की होती हैं शैलियां ना, वो कहीं ना कहीं आंखों के सामने घूमने लगती हैं और जी करता है कि हम भी उन्हीं की तरह नृत्य करें। विविध भारती के कानपुर केंद्र से गाने तराने में आज बात हो रही है डांस और योग के संगम की, और इस संगम की एक झलक गांव से। जी हाँ, चलते हैं गांव की ओर, गांव की चौपालों की ओर, जहां भांगड़ा, गरबा, घूमर और लावड़ी जैसे लोक नृत्य शैलियां अक्सर हमें देखने को मिलती है। असली जीवन के उत्सव को ये सारे नृत्य जो हैं दर्शाते हैं। और इन डांस की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इस डांस की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इस डांस में जो है ना, बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के भी दिलों को जोड़ लिया जाता है। जी हाँ, चलिए हम सब भी जुड़ते हैं ऐसे ही एक खूबसूरत से सॉन्ग से।

बहुत ही अच्छा गाना था और इस गाने को जब भी लोग सुनते हैं तो बहुत पसंद करते हैं और सारी भीड़ जो है अगर इस गाने को सुन लेती है तो वहाँ पर वो एक बार रुक कर उस गाने को गुनगुनाती जरूर है। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं विविध भारती का कानपुर केंद्र FM 103.7 पर। और डांस का एक नया तड़का

दोस्तों इस गाने को सुन के ना 60 और 70 के दशक में फिल्मों के गाने याद आ गए। जी हाँ, उस समय में फिल्मों में जनाब अगर आपको ध्यान होगा तो कैबरे डांस का एक अलग ही आकर्षण था। जी हाँ, झिलमिल रोशनी, शानदार मंच, आत्मविश्वास से भरपूर प्रस्तुति, नृत्य की ये शैली भी भारतीय फिल्म संगीत का अहम हिस्सा रही है। और 70 के दशक की डॉन फिल्म याद है आपको? जरूर याद होगी। और देखिए, शायद आपके चेहरे भी खिल गए होंगे ये नाम सुनते ही। फिल्म का मशहूर गाना ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, जी हाँ, इस गाने ने बिल्कुल तहलका मचाया था। और ये डांस जो है ना, एक कैबरे शैली का नृत्य है, खास कैबरे और फ्री स्टाइल बॉलीवुड डांस फॉर्म है ये गाना। तो लेट्स एंजॉय।

मतलब कैबरे की दीवानगी के बाद आया डिस्को का दौर, और डिस्को ने भी लोगों को बहुत दीवाना बनाया, और इस दौर में भी ना लोगों ने डिस्को को खूब अपनाया और इस फॉर्म को खूब किया भी। और डिस्को के दौर में जनाब हर पार्टी की फ्लोर जो है ना डांस फ्लोर में बदल जाती थी। और डिस्को डांस की हम बात करें तो डिस्को डांस के फ्लोर पर उनका जलवा होता था जो योग से जुड़े होते थे। कहने का मतलब है योग से जुड़े लोगों में डांस करते वक्त फ्लेक्सिबिलिटी और स्टैमिना कहीं बेहतर नजर आता था कंपैरेटिवली।

जी हाँ, बॉलीवुड ने जो है हर डांस फॉर्म को अपनाया और उसे अपना रंग दे दिया। कई बॉलीवुड डांसर्स अपनी दिन की शुरुआत योग से करते हैं, मसलन शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोड़ा खान और माधुरी दीक्षित वगैरह। योग शरीर को जो है ना लचीला बनाता है और उसे जब डांस के साथ जोड़ दिया जाता है तो डांस उसे अभिव्यक्ति देता है, यानी कि योग भीतर की ऊर्जा है और डांस उस ऊर्जा का उत्सव है। चाहे कथक हो, जी हाँ, कथक की बात करें तो अगर कथक की नज़ाकत हम कहें तो शायद गलत नहीं होगा। चाहे कथक की नज़ाकत हो, भरतनाट्यम की गंभीरता हो, फोक की मस्ती या कैबरे की चमक, हर नृत्य में हमें जीवन का आनंद लेना सीखना चाहिए। जी हाँ, और सिखाता भी है नृत्य ही, और नृत्य के साथ ही योग का संतुलन जब जुड़ जाता है तो तन स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। तो मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जिंदगी की धुन पर थिरकते रहिए। इसी संदेश के साथ मैं मुस्कुराती मालिनी गाने तराने से इजाजत चाहूंगी। सुनते रहिए 103.7 FM पर विविध भारती का कानपुर केंद्र।

ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र, आप सुन रहे हैं FM 103.7 पर। और अगला जो प्रोग्राम है वो है जयमाला। जयमाला के लिए खींचे बस थोड़ा सा इंतजार।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: विविध भारती कानपुर पर सुनिए कार्यक्रम आपके संदेश, जिसमें होगी आपकी आवाज और आपकी बात, जहां आपके पत्र, ईमेल और सुझाव बनेंगे कार्यक्रम का हिस्सा। हर महीने के दूसरे बुधवार को शाम 5:45 पर सुनिए आपके संदेश, सिर्फ विविध भारती 103.7 FM पर। तो अपनी प्रतिक्रिया हमें आज ही भेजिए। हमारा पता है, केंद्र निदेशक आकाशवाणी, बेना झाबर रोड, कानपुर। हमारा ईमेल एड्रेस है airkansomedia@gmail.com। हमें आपके ईमेल और पत्रों का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी आवाज है हमारी ताकत।
3: प्रस्तुत कार्यक्रम जय माला

0: ये स्वर थे लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों के। फिल्म का नाम था एक ही रास्ता। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना ये गीत। गीतकार, संगीतकार और मुख्य स्वर है कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना,
1: भारतीय सेना। अभी आप सुन रहे थे ये गीत, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर था कैलाश खेर का।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: जयमाला कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का गाना। गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे।

0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गुलशन बाबरा का लिखा गीत था ये, और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के थे फिल्म जंजीर के लिए।

0: तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

0: ये स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी फिल्म अभिमान के लिए।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह आवाज़ें लता मंगेशकर की फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जयमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, किशोर कुमार की आवाज और फिल्म का नाम ब्लैकमेल।

लीजिए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए सईद राही का कलाम, गायक स्वर राजकुमार रिज़वी का।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर

0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंद्रधनुष के तहत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए झलकी पुरातत्व के तत्व। लेखिका है नाज़नीन और निर्देशन है चंद्र प्रभा भटनागर का।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अरे मुंशी जी आइए आइए।
3: क्या अबे ये क्या है साहब?
2: कुछ नहीं बस ऐसे ही
3: ऐसे ही। अबे आधा फुटपाथ घेर रखा है और कहता कुछ नहीं। अब ये कैसा खटरा फैला रखा है? ये क्या?
2: दरअसल हम लोग पुराना माल बेच रहे हैं
3: जी। पुराना माल समझा बेटे।
2: बात ये है कि ये तो बात को हमेशा घुमा फिरा कर बोलता है। वैसे हम लोग डेकोरेशन पीसेस बेच रहे हैं
3: जी। डेकोरेशन? अबे ये क्या होता है?
2: डेकोरेशन पीसेस यानी सजावट के टुकड़े।
4: अबे तुम कुछ देर अपनी चोंच बंद रखो।
2: ठीक है मुंशी जी। ये चीजें ड्राइंग रूम वगैरह में सजाने के काम आते हैं।
3: अच्छा तो बेटा तू क्या मुझे नया समझता है?
4: अजी नहीं।
3: अबे 24 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ। 24 साल से अरे लोग भूतान सीन सीन कैलेंडर घर पे सजाते हैं या ये कबाड़ है?
4: कबाड़? क्या कह रहे हो मुंशी जी?
2: अरे भाई ये पुराने जमाने की अनमोल चीजें हैं।
3: चल चल अच्छा अनमोल ही सही है मगर कौन रखेगा अपने वो क्या कहते हैं ड्राइंग रूम में?
2: आप लीजिए। अरे अमीर लोग और कौन है? अरे दूसरों पर रब मारने के लिए ये लोग इन्हें अपने घर में रखते हैं भाई, ताकि सोसाइटी की नाक ऊंची रहे। आप इस घड़े को देखिए, देख रहे हैं ना आप?
3: पुराना है
2: जी। हाँ देखने में मामूली है मगर हजारों साल पुराना है।
3: क्या कहा हजारों साल?
2: जी हाँ, मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से निकला था।
3: ये क्या?
2: और इस संदूक को पहचानते
3: हैं?
2: इससे वास्को डी गामा पुर्तगाल से अपने साथ लाया था।
3: अच्छा अच्छा सुन
2: जी,
3: बहुत बुकराजी छाट चुके हैं आप। सीधे हो जाओ ठीक कर दूंगा।
2: हाँ
3: ये डंडा देखा है? अबे ये डंडा देखा है?
2: जी हाँ।
3: ये चंगेज खां का है।

0: चंगेज खां का, जिससे उसने बड़े बड़ों को सीधा कर दिया है। लेकिन अब मैं तुम दोनों को सीधा कर दूंगा। हाँ, बता देता हूँ
1: मुंशी जी। ये वाकई चंगेज खां का डंडा है।
2: ऐसा कीजिए मुंशी जी,
0: क्या
2: ये डंडा हम लोगों को दे दीजिए।
1: जी हाँ, हम इसे अच्छे दामों में बेच देंगे।
0: मैं कहता हूँ जी, उठाओ ये, उठाओ उबक तुबक, उठाओ यहाँ से। अबे सरकार ने फुटपाथ लोगों को चलने के लिए बनाया है, न कि एक कबाड़ फैलाने के लिए। अरे बढ़ाओ दुकान, मैं कहता हूँ बढ़ाओ। चलो कम हो यहाँ, कम हो जाओ, कम हो जाओ।
2: मैं कहता हूँ देखिए, नहीं हमको, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे।
0: अबे खाल में रह, खाल में बहुत चबड़ चबड़ न कर। नेतागिरी छाड़ी ना तो एक ही ढंडे में भेजा खोपड़ी से निकाल कर वो पार्क में वहाँ भेज दूंगा। समझे?
3: जाने दीजिए दारोगा जी, बच्चा है अभी।
0: हाँ बेटा, मक्खन लगा रहा है, दारोगा कहकर मेरा ओहदा बढ़ा रहा। अबे तू क्या समझता है, अबे क्या समझता है, तेरे इतना कहने में मैं पसी जाऊंगा।
3: अरे दारोगा, दारोगा क्या, आप तो हमारे लिए थानेदार से भी बढ़कर है। क्या चले है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो हमारी सरकार है,
0: माई बाप है। बात बात बात बात बकवास बंद, ज्यादा जबानी मक्खन बाजी नहीं चाहिए। कुछ वो
4: ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो, जिसे को समझा देना।
3: बिल्कुल,
4: हाकिमों से एकदम से जरा बात किया करें।
3: जी हाँ बिल्कुल। और
4: क्या, मैं कहता हूँ तू आदमी है या शामियाने का बाप है? अबे क्या जरूरत थी उसे?
2: क्या बताए क्या बताए, उसने उसने कानून बघारा तो मुझे गुस्सा आ गया।
4: अबे वो पुलिस वाला है, वो तो कानून की बात करेगा ही।
2: भूल हो गई, अब से ऐसी पंगे बाजी से दूर।
4: शाबाश, तरक्की करोगे आगे चलकर बेटा, अगर मेरी बात मानोगे।
2: ये समस्या तो हल हो गई,
4: हो गई।
2: अब समस्या है ग्राहकों की भीड़ जुटाने की।
4: अरे चेले वो भी हल हो जाएगी, बस थोड़ी बतौलेबाजी करनी पड़ेगी।
2: बतौलेबाजी?
4: अब हाँ, भीड़ इकट्ठा करने के लिए पहले कुछ अलूल जलूल किससे कहानियां सुनाना पड़ता है ना, क्या समझे?
2: समझ गया समझ गया। और जब भीड़ जमा हो जाए तो असली धंधे पर आ जाओ।
4: अबे चेले हो जा तैयार है। तो मेहरबान अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए हमके लाला। अरे सर करारे जिसको काला, कई पहर वो जिए, और जुल्फ नागिन का डसा मांग कर पानी न पिए। तो जाने वाले देख ले मुँह अपना फेर कर, अरे राह में हम भी खड़े हैं रास्ते को फेर कर। हाँ तो मेहरबान साहिबान कद्रदान, लगा कर सुनिए ध्यान। कहते हैं कि किसी जमाने में थे एक हकीम लुकमान, जिनकी थी एक बोलती हुई दवाओं की दुकान। लेकिन मेहरबान, ना तो अब रहे हकीम लुकमान और न रही उनकी वो बोलती हुई दुकान। हे लड़के बैठ जा। मगर मेहरबान कदरदान, आपके इस हसीन शहर में खुल गई अनमोल चीजों की एक बेहतरीन दुकान।
2: गुरु क्या कह रहे हो, इस कबाड़ को अनमोल बता रहे हो?
1: अभी चीले तू है अभी बच्चा, अकल का है कच्चा, तू अपनी चोंच बंद रख। अबे जिसे तू कबाड़ कह रहा है वो है बहुत कीमती और नायाब।
3: अबे चराग लेकर ढूंढने से भी नहीं होगा कामयाब।
5: अरे कुछ बताओ तो सही, आखिर ये है
4: क्या? इस पर गौर फरमाइए, देखने में है ये मिट्टी का ढेला, मगर इसमें छिपी है इतिहास की तीन जंगें। जी हाँ, ये पानीपत के मैदान की मिट्टी है मेहरबान। इसकी सुर्ख रंगत इस बात का सबूत है कि इस पर न जाने कितने सुरमाओं ने अपना लहू बहाया।
5: ऐसी मिट्टी लखनऊ में हर जगह
0: और कहाँ की दुकान के पास जाओ, मिट्टी को बोलो, अरे पीक से लाल ऐसी मिट्टी मिल जाएगी।
4: और साहिबान साहिबान जरा इस पैजामे पे निगाह डालिए।
5: पैजामा?
4: ये वही पैजामा है जिसे महामूर्ख शेख चिल्ली पहनते हैं।

0: उस्ताद,
1: ये पैजामा छोड़ो, इस प्याले का इतिहास तो बताओ।
0: अबे अभी बताता हूँ। चले हाँ तो साहिबान, ये देखिए ये प्याला है, ये देख रहे ना,
2: देख रहा
0: हूँ, है तो मामूली मगर है खूनी।
2: खूनी?
0: जी हाँ, इसी प्याले में मशहूर फिलोसफर सुकरात को जहर दिया गया था।
3: अमा नखास के खरीदे हुए गूदड़ और
0: सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए, मैं मेहरबान कदरदार तेरे
4: सारे ग्राहक चले गए, पल्ले का 2 रुपए भी पुलिस वाला ले गया, अब क्या होगा उस्ताद?
0: घबरा मत चले,
5: वो देख अभी अंदर से एक उधर
0: हीरो की कदर करने वाला जौहरी आ रहा है।
5: उस्ताद देखने में तो नवाब नजर आ रहा है।
0: अब बेटे अपना तजुर्बा कह रहा है कि ये जरूर कुछ ना कुछ करेगा।
5: कुछ भी हो उस्ताद इसे गिरा लो, बिल्कुल जाने न पाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
4: आइए आइए आइए हुजूर, आधा मर्दे आधा मर्दे आधा मर्दे, क्या बेच रहे हो मिया?
0: किबला एक से एक नायाब चीजें हैं, ये देखिए
4: माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में तो
0: अरे हजूर इनके रूप रंग पर मत जाइए, सबकी सब ऐतिहासिक यानी कि तारीखी हैसियत रखती है।
4: फरमाया तारीखी हैसियत?
0: जी हाँ, जैसे कि हुजूर अब ये देखिए ये पर्दा, मुलाजा फरमाइए,
4: देख रहा
0: अपने वक्त की मशहूर तबायफ उमराव जान के उस कमरे का है जहाँ वो मुजरा किया करती थी।
4: जान? है, क्या पूछते हो हाले दिले जार है अदा, आवाजगी में हमने जमाने की सैर की।
0: क्या बात है,
1: और बन्ना परवर ये रही आमों की गुठलियाँ।
4: गुठलियाँ की गुठलियाँ?
0: गुठलियाँ हुजूर,
4: क्या ये भी तारीखी हैसियत रखती है?
0: जी जी हुजूर, अरे इन्हें नहीं जानते आप, इन्हें चचा गालिब ने चूस चूस कर फेंका था।
4: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, भाई मिर्जा गालिब आमों को तो बड़े शौकीन थे।
1: और हुजूर इस चिराग को देखिए,
4: लगता है ये अलाउद्दीन का चिराग है।
0: बजा फरमाया हुजूर, ये वही चिराग है।
4: अरे तो मियां जरा घिस कर जिनको बुलाइए तो।
1: हुजूर गुस्ताखी माफ हो, जिन तो ना आ सकेगा।
4: क्यों भाई क्यों?
0: क्या है नवाब साहब कि जिन ने इस चिराग को छोड़कर 10 किलो वाट के बल्ब में बसेरा कर लिया है?
4: अच्छा अच्छा, वो क्या चीज है?
1: वो पानी भरने वाली मशक है।
4: माशाल्लाह भाई, इसको तारीख की किस अजीब हस्ती ने इस्तेमाल किया था?
0: लीजिए, अरे आप नहीं जानते हो तो ये मशक उस भिश्ती की है जिसने एक बार मुगल बादशाह हुमायूं की जान बचाई थी। हुजूर
4: याद आया हाँ। हुमायूं ने खुश होकर उसे एक दिन के लिए बादशाह भी तो बना दिया।
1: जी
4: था।
1: हाँ। और बादशाह बनते ही उसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए।
4: माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई मुझे तो ये मशक बहुत पसंद आई, नायाब शय को मैं अपने गरीब खाने की जीनत बनाऊंगा।
1: हुजूर हुजूर,
4: भाई क्या कीमत है इसकी?
0: अब आपसे मोल भाव क्या करना हुजूर, सिर्फ 50 रुपए इनायत फरमाइए।
4: अमां 50 रुपए? बस इतनी नायाब चीज की इतनी कम कीमत? ये लीजिए थैली संभालिए।
0: शुक्रिया।
4: 50 से भी ज्यादा की रकम है।
0: शुक्रिया हुजूर शुक्रिया।
4: अच्छा भाई तो मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज।
0: अबे देखा चले, मैं न कहता था कि हीरे की कदर जौहरी ही जानता है।
1: सही कह रहे हो उस्ताद, पूरी थैली ही थमा गया,
5: काफी भारी है, माल भी बहुत होगा
1: उस्ताद। मैं खोल

0: खत देखो।
1: हाँ अभी खोलता हूँ खोलता हूँ मैं।
0: ये लो।
1: अरे
0: ये क्या?
1: चमड़े के टुकड़े।
0: चमड़े के टुकड़े नहीं उस्ताद, मुझे तो लगता है ये चमड़े के सिक्के हैं।
1: क्या? चमड़े के सिक्के?
0: उसी भिस्ती के दौर के सिक्के।
1: अबे मर गए, यानी के धोखा
0: उस्ताद, धोखा।

पुरातत्व के तत्व। अभी आप सुन रहे थे नाज़रीन की लिखी ये झलकी। निर्देशन चंद्रप्रभा भटनागर का था। ये थी आकाशवाणी लखनऊ की भेंट। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

0: हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में अभी आपने समीर का लिखा ये दो गाना सुना। स्वर उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। फिल्म का नाम था तेरे नाम।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।

सुधाकर शर्मा का लिखा गीत अभी आपने हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुना। स्वर कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों के थे। फिल्म का नाम था प्यार किया तो डरना क्या। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथी फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अनुमलिक का संगीत है, जावेद अख्तर के बोल, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें फिल्म रिफ्यूजी के लिए।

सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में अभी आपने फिल्म रिफ्यूजी का ये गीत सुना। जावेद अख्तर के बोल थे और अनु मलिक का संगीत। इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला

0: क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में

0: क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
1: As our foreign policy,
2: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
1: Remains a matter of right, not as a struggle.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
4: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
3: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
5: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
3: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
7: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति

0: के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18

0: करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है FM 103.7 पर। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल विविध भारती का कानपुर केंद्र।
2: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।

वेलकम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? भाई देखिए, आपकी पसंद के गानों को लेकर यानी बहुत खूबसूरत खूबसूरत मेल्स आ रही हैं, फरमाइशें हैं आपकी बहुत अच्छी और बहुत सारे गाने आ रहे हैं, तो सभी को लेकर के मैं आरजे मालिनी, बोले तो मुस्कुराती मालिनी, आ चुकी हूँ स्टूडियो में। जी हाँ, आपकी पसंद के गानों को आप तक पहुंचाने के लिए। तो भाई तैयार हो जाइए एंजॉय करने के लिए। अब से लेके पूरे 10 बजे तक बहुत ही खूबसूरत से गाने आप तक पहुंचने वाले हैं। और पहला गाना किस लकी लिसनर का शामिल होगा ये तो फिलहाल अब देखिए मैं शामिल करने जा रही हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर एक बार आपकी मेल शामिल हो जाए तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बार बार मेल ना करें, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और दूसरी बात कि भाई कोई भी नाराज ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इस एक घंटे में आप सभी के गाने शामिल हो जाए, इम्पॉसिबल है। लेकिन नाम मैं पूरा कोशिश करूंगी शामिल करने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो चलिए फर्स्ट सॉन्ग जो आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसकी फरमाइश है, वो एक पत्र में फरमाइश आई है। फिल्म चित्त चोर का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, येसुदास की आवाज़ है, गीत संगीत है रविंद्र जैन का। और जनाब इस गीत के लिए जो हमारे पास से फरमाइशी पत्र आया है वो आया है रामलीला मैदान सचिंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी मीनू चुनमुन शिवांश त्रिपाठी और अभिजीत सिंह सांगा का। और इसी के लिए देखिए दो पत्र और भी हैं मेरे हाथ में। ये पत्र आए हैं हमारे पास गणेशपुर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुल फराज शेख और बेबी मुस्कान। और एक पत्र और मेरे हाथ में है इसी गाने के लिए। ये जो पत्र आया है हमारे पास, ये आया है प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले का है। ये भेजे हैं इन्होंने गौतम नगर जिला नांदेड़ से है ये पत्र हमारे पास। और अब हम मेल को शामिल करते हैं इस गीत के लिए जो हमारे पास मेल आई है। फिलहाल इन्होंने कहा है कि हमारा किसी भी गाने में नाम शामिल कर लीजिए। तो ये है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी हैं, और इसी गीत को सुनना चाहा है। श्रोता रघुवीर नगर से ये सुनना चाहे दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू ने। आई थिंक मैं इन लिसनर का नाम पहली बार पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लगा है, आप आकाशवाणी परिवार के सदस्य बन चुके हैं। देखिए एक और बहुत बेहतरीन सी एक मेल हमारे पास आई है आरजे मालिनी जी को। आदाब आदाब जी, आप हमें किसी भी बेहतरीन गीत में शामिल कर लीजिए। और देखिए कितने अच्छे हैं लिसनर, इन्होंने कहा है किसी भी गीत में शामिल करिए। तो ये है शेरवानी स्कूल गंज टुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। और आकाशवाणी कानपुर हमारे के बहुत करीब है भाई, आप जैसे लिसनर्स भी आकाशवाणी के दिल की धड़कन है। तो चलिए फिलहाल तो इसी बात पर एक गाना हो जाए, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है चित्तचोर का, मैं सुनवा रही हूँ आपको, फिलहाल एंजॉय करें।

जी बिल्कुल, शाम ढल चुकी है और रात अब गहरा रही है। और देखिए इतना खूबसूरत गाना हमारे लिसनर्स ने पसंद किया है। और फिलहाल हम आपको बता दें कि इस गाने के लिए हमारे पास और भी मेल्स आ गई थी। ये मेल आई है उत्तम कुमार भगत की, श्वेता भगत की, सु तासु अर्णव आनंद, सत्यम आनंद की, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से इनकी मेल आई है। लिखते मान लीजिए, नमस्कार। नमस्कार जी, ये पाकुड़ झारखंड से नाम थे और बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से नाम है मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। तो चलिए, आप सबका नाम शामिल हो गया है। ये आई है लुबना अंसारी की मेल हमारे पास आई। नमस्कार, आदाब। हमारा भी नाम शामिल कर लीजिए किसी भी गाने में। कृष्ण की नगरी मथुरा से हैं भाई, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। ये कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी और नंदिली अंजलि। और अब सेकंड सॉन्ग जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो बहुत ही प्यारा सा गाना है। फिल्म का नाम है आनंद। आनंद फिल्म का गाना है। और आपको बता दें कि इस गाने के लिए हमारे पास जो है पत्र आया है, मेरे हाथ में है। और पता है पत्र मेरे हाथ में है, फिर भी मैं ढूंढ रही हूँ। इतनी कंफ्यूज होती हूँ मेल और पत्रों के बीच में कि मैं ढूंढने लगती हूँ कि पत्र है कहाँ और मेरे हाथ में पत्र है। और ये पत्र हमारे पास आया अंधेरी बावली मूसा नगर से, माजदा बेगम, एम नईम, एम शाफिया, परवीन बेगम, अली हैदर, रफत हबीब, आबदा और नूर जहाँ, फहीम, अकबरपुर से इकरा बेगम, शफीक, अनीसा, शिवा, इरम, ये सभी हैं हमराही रेडियो श्रोता संघ के सदस्य। और इसी गीत के लिए हमारे पास देखिए और भी पत्र आया है। ये हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का। ये मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब से, लिसनर्स क्लब राम चबूतरा कालपी से ये पत्र हमारे पास आया है। और अब हम मेल्स को शामिल करते हैं। इस गीत के लिए हमारे पास मेल आई। इस गीत के क्या आपने लिखा है, कोई भी गाने में नाम शामिल कर लीजिए। तो ये है रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी निशा और जालंधर से देवशंकर जटोलिया और भरत जटोलिया की मेल हमारे पास आई है। और आनंद फिल्म का जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुकेश ने गाया है सलील चौधरी की धुन पर। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार साहब ने। और देखिए आशा सपकाल जी की भी मेल आ गई है, इन्होंने भी अपना नाम शामिल करने को कहा है। काफ़ी पुराने लिसनर हैं हमारे। ये सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, तो इन सब ने भी अपना नाम शामिल करने को कहा है। देखिए एक और मेल आई है, कोई भी गीत में हमारा भी नाम शामिल करें भाई। देखिए बहुत अच्छा लगता है, आप सब सुनते हैं और हमें रिस्पॉन्स करते तो हमें लगता है हमारे साथ इतनी रात तक जागने वालों में बहुत सारे लोग हैं भाई। देखिए ये मेल हमारे पास आई है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी की। तो फिलहाल एक और मेल आई है, चलिए पढ़ लेते हैं। आदरणीय दीदी जी को प्यार भरा नमस्कार, आपकी फरमाइश प्रोग्राम में हमारा भी नाम शुमार कर लीजिए। ये है शास्त्री नगर बीड शहर से आशा सपकाल, किशन सपकाल, सोनिया सपकाल, साईंराज सपकाल, विशाल सपकाल की मेल हमारे पास आई है। तो दोस्तों चलिए गाना को मैं प्ले करती हूँ और गाना पहुँच रहा है आप तक।

बिल्कुल, सतरंगी गानों की महफिल भी हम आपके लिए ही सजा कर लेकर आए हैं। और देखिए हमारे पास मेल लगातार आ रही हैं और एक मेल बहुत अच्छी सी आई है हमारे पास। ये हैं बदलापुर मुंबई से, लिखते हैं आदरणीय मालिनी दीदी जी नमस्कार, बहुत प्यार करते हैं आकाशवाणी कानपुर से, थैंक यू सो मच जी। और ये है बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, लाडला टुकटुक गवाणकर, मेहरनगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और कुमारी धोनी गवाणकर उर्फ परी, इन्होंने थैंक यू भी बोला है। और देखिए एक और हमारे पास मेल आई ऐसी गीत के लिए जो अभी हमने बजाया, प्यार भरा आदाब मालिनी दीदी जी, आप खैरियत से हो, दुआ में याद रखना, बिल्कुल हम आपको कभी भूलते नहीं है। इन्होंने भी लिखा है मेरा भी नाम शामिल कर लीजिए। तो ये है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना की ये मेल है हमारे पास। एक मेल हमारे रेगुलर लिसनर की आई है, प्यार भरा आदाब मालिनी दीदी, आदाब जी, ये लगता है दोबारा बार बार मैं आपको बोल रही हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ बार बार मेल अगर एक बार पढ़ ली जाती है तो तुरंत मत करिए। आकाशवाणी कानपुर आपकी फरमाइश प्रोग्राम प्रसारक जी नमस्ते, नमस्ते जी भाई, ये बुलढाणा बंड वट शिंगी महाराष्ट्र से मेल है। अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से है, सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार की बहुत ही प्यारी प्यारी सी मेल सारी। कोई गुलाब बनाता है तो कोई हेलो से हाथ भेज रहा है, बहुत अच्छा सा लग रहा है, जैसे लग रहा है आप लोग साक्षात मेरे सामने हैं। देखिए एक और मेल हमारे पास आई है, ये मेल आई है पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम बेबी, अरिबा हबीबा की, तो इन सब का नाम शामिल हो गया है। और नेक्स्ट जो सॉन्ग मैं सुनाने जा रही हूँ वो भी बहुत ही खूबसूरत सा है, मतलब मुझे लगता है आप लोग को भी पसंद आएगा। और इस गीत के लिए हमारे पास जो मेल आई है वो है तनु शर्मा दुबग्गा लखनऊ से, मालिनी मैम को मेरा नमस्कार, नमस्कार जी आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच जी, आपकी आवाज़ में हर एक कार्यक्रम सुनना मेरी पहली पसंद होती है, बहुत अच्छा लगा आप इतना डेडिकेटेड हैं। मैं गाना सुनना चाहती हूँ बरसात।

उवी का वादा करके सज्जन नहीं आया, बहुत अच्छा गाना आपने पसंद किया, ये हस्बैंड को डेडिकेट करना चाहती हैं और पूर्णिमा मैडम को और मुझे भी डेडिकेट की हैं। तो चलिए मैं बता दूं, बरसात का जो गाना है ना, ये हरिहरन मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और सैयद साबरी की आवाज़ों में है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर। गीत के वो लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, और इसी गीत के लिए हमारे पास मेल आई है नीलू शर्मा, ये हमारी एक रेगुलर लिसनर हैं। दो लाइन अपनी दोस्त पीहू मनु के लिए अर्ज करती हूँ। मोहब्बत की शमा जला कर तो देखो, दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत हमसे तो कहना जरा, हमसे नजरें मिलाकर तो देखो। वाह वाह क्या बात है, बहुत ही उम्दा लिखा है नीलू जी आपने, और आप हमारी रेगुलर लिसनर हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग रेगुलर कनेक्ट रहते हैं और इतना डेडिकेशन के साथ प्रोग्राम को सुनते हैं। गुड इवनिंग कानपुर और गाने तराने प्रोग्राम बहुत सुपर हिट लगा, अच्छा लगा आपको, थैंक यू सो मच। और इन्होंने डेडिकेट किया है यही वाला सॉन्ग सुनना चाहे, इन्होंने ये गाना डेडिकेट किया है स्नेहा, सोनी, आरती, पूर्णिमा, मनु, वंदना, पीहू, रोशनी, बबीता, गुलाब सा, सिद्दीकी, यासिर जी को। और एक और मेल है इसी गीत के लिए है, हेलो गुड इवनिंग मालिनी मैम, मैं गुलाबसा सिद्दीकी संडीला से प्रोग्राम सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे जो है पूर्णिमा मैम की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, आप सभी की आवाज़ जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मुझे गाना सुना दीजिए। उन्होंने भी लिखा है कि बरसात मूवी का गुलाबसा सिद्दीकी गाना सुनना चाहती हैं, तो चलिए गाना मैंने क्यों कर लिया है, बहुत जल्दी पहुँच रहा है आप तक। और इसी गाने के लिए एक और मेल हमारे पास स्क्रीन पर दिख रही है, ये मेल हमारे पास आई है, हाय हेलो डियर मालिनी मैम जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, बोलो बोलो कैसी हैं बहुत अच्छी हूँ मैं, ये अच्छा ये हैं मिराल यासीर जो हैं, इन्होंने मेल करी है, ये मेल आई है मियांगंज उन्नाव से, उम्मीद है आप बहुत अच्छी होंगी, अच्छी हूँ, उम्दा वॉइस, गुड शो, आप जब भी शो पर आती हैं तो शो में चार चांद लग जाते हैं डियर मालिनी मैम। भाई एक शायरी है मेरे एक खास दोस्त के लिए, दो आंखों में बस दो ही आंसू, एक तेरे लिए एक तेरी वजह से, क्या बात है बहुत खूबसूरत, मोहब्बत दो दिलों को आवारा बना देती है, गर्दिश में रहने वालों को सितारा बना देती है, मोहब्बत अगर अपनी हद में रहे तो ठीक, वरना किसी को वीर तो किसी को जारा बना देती है, बहुत खूबसूरत सा लिखा है यासिर जी। और फिलहाल तो देखिए आप सबकी पसंद का गाना मैंने प्ले भी कर दिया है, पहुंच रहा है आप तक। और एक एसी के लिए हमारे पास स्क्रीन पर एक वो दिख मेल और दिख रही है, ये हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वैदिका फूलमाली, मालिनी जी आज जो है हमें भी शामिल कर लीजिए, ये हैं अहमदपुर ठेगांव खंडवा से, तो आपकी इच्छा को मैंने पूरा कर दिया है, तो पहुंच रही है गाना आप तक।

जी हाँ, अभी बरसात को आने में तो काफी देर है, लेकिन फिलहाल तो गानों के जरिए बरसात की बौछार हम तक पहुंच रही है। बहुत ही खूबसूरत से गाने हैं और इस गाने के लिए हमारे पास और भी मेल आई थी। मालिनी दीदी नमस्कार। नमस्कार जी, देखिए लिखते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच जी। ये हैं कहाँ से इन्होंने मेल करी है, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ से अम्भई तालसिलोड जिला छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से मेल आई। भाई महाराष्ट्र से हमारे पास बहुत मेल आती है। अनिल कुमार घोटके वैशाली, अनिल प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके, यज्ञेश घोटके की ये मेल है। और एक और हमारे पास स्क्रीन पर इसी गाने के लिए मेल दिख रही है। नमस्कार नमस्कार जी, ये हैं मजनू का टिल्ला से, ये भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतरा मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, इन्होंने भी सुनना चाहा है। और अब हम गाना सुनवाने जा रहे हैं आपको, बहुत प्यारा सा गाना है। ये है जॉनी मेरा नाम फिल्म से है, किशोर कुमार उषा खन्ना की आवाज़ें, इंदिवर की धुन पर गीत के बोल लिखे हैं, इंदिवर की धुन है और गीत के बोल लिखे हैं कल्याण जी आनंद जी ने। तो इस गीत के लिए चलिए मेल हम बता दें किस किस ने की है। पहले तो हम पत्र को शामिल करते हैं, ठीक है। इस गीत के लिए हमारे पास जो पत्र आया है, कहाँ से आया है, ये आया है नूर महल महसोल सीतामढ़ी से, मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज और साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, ये कोहात बिहार से नरगिस जफर, इनका पत्र है। दूसरा पत्र है इसी गीत के लिए, यह गणेशपुर गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से, एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान। और तीसरा पत्र है रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से है, खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललित नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी, इनका भी है। और एक मेल और आ चुकी है इस गाने के लिए। नमस्कार जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हम आपके लिए प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, आप मेरा अभिनंदन करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये मेल हमारे पास आई चंडीगढ़ सिटी से, सतीश अनेजा, विमला अनेजा की। भाई गाना देखिए आपकी पसंद का हम पहुँचा रहे हैं आप तक, आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक मेल हमारे पास आई है, रिस्पेक्टेड आरजे मालिनी जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, कैसे हो आप, अच्छे हैं, आपका बेहतरीन प्रोग्राम सुन रहे हैं। भाई बहुत अच्छा है, चलिए आपको प्रोग्राम बेहतरीन लग रहा है। और ये मेल हमारे पास भेजने वाले मलयान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और आदि जैन, इन लोगों ने भी गाना सुनना चाहा है। और एक और हमारे आए हैं लिसनर, ये है, लिखते हैं आरजे जी को प्यार भरा सलाम, सलाम जी, आज हमारी पसंद पर ये नगमा सुनाइए। तो चलिए आपको भी हम सुना रहे हैं गाना, नूर नगर गंज डुडवारा से है, उज्मा शेख, शिफा शेख, रिफा शेख, और नाम पढ़ने के लिए इन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। और जो मतलब हम गाना सुनाने जा रहे हैं ना आपकी फरमाइश में, ये वाला जो अभी गाना आप सुनने जा रहे हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म का, उसके लिए

मेल और आई नवाब खान सांगे की है ये मेल में लिखते हैं, नमस्कार आरजी जी, नमस्कार वर्ली, मुंबई से इन्होंने मेल किया है। बहुत ही खूबसूरत से इन्होंने रोजेस बना के भेजे हैं मेल में। और एक है मिश्री लाल की मेल हमारे पास आई है, नमस्कार प्रिय दीदी जी, मधुर स्मृति, ये अनुरोधकर्ता का नाम लिखे हैं, तखतपुर छत्तीसगढ़ से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, शुभ रात्रि जी। इन्होंने शुभ रात्रि भी कह दिया है, और शुभ रात्रि जैसे इन्होंने कहा है, भाई मुझे नींद का एहसास होने लगा है, लेकिन गाना तो मैं सुनवाऊंगी आपको, तो गाना पहुँच रहा है आप तक।

भाई प्यार झूठा तो नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं आप दोस्तों? भाई प्यार सच्चा होना चाहिए, है ना? झूठा प्यार एक ना एक दिन ओपन हो ही जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं, ये जो गाना था इसके लिए और भी मेरे पास मेल आई थी। नमस्कार आरजे जी, वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान की ये मेल है। और इसी के लिए हमारे पास मेल और आई थी किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास आशा देवी की है ये मेल। उन्होंने भी ये गाना सुनना चाहा था और ये है। नमस्कार जी, मालिनी जी, प्रोग्राम के सभी नगमे हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, किसी भी गीत में हमारा भी नाम शामिल कर लीजिए। ये है उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, तो आपका भी नाम हमने शामिल कर लिया। भाई देखिए, हम बहुत कोशिश करते हैं कि सबके नाम शामिल कर लें। एक और आइए, गुड इवनिंग मैम जी, आप कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आप इतने अच्छे से लिखते हैं, प्रोग्राम बहुत झक्कास, एकदम लल्लन टॉप, गर्दा उड़ा रहा है। वाओ क्या बात है, प्रोग्राम गर्दा उड़ा रहा है। वही बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी, मुझे हंसी आ गई। खैर मेरा नाम रोशन

रोशनी रावत है, गांव बमहना तहसील सफीपुर उन्नाव से मेल करी हैं ये। मेरी इच्छा है कि एक गीत सुनने की अगर मेरी ऊपर कृपा करेंगी तो खुशी होगी। देखिए थोड़ा सा आप कुछ गलत सा लिख गया है, खैर मैं भी नहीं समझ रही हूँ भाई। बिल्कुल आपका नाम हमने देखिए शामिल कर लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। रोशनी जी आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी हैं, तो चलिए आपका नाम तो शामिल हो गया है, बहुत अच्छी मेल आपकी थी। और ये एक आई हमारे पास टीएस चंदेल की, देविन तालाब लालपुर शिवराजपुर से टीएस चंदेल जी की ये मेल है। खुशबू सिंह चंदेल, निष्ठा रौना, कार्तिक भारत सिंह चंदेल, पूरी फैमिली के साथ कार्यक्रम सुन रहा हूँ। रिस्पेक्टेड मालिनी मैम को मेरा नमस्कार, मेरा भी नाम किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। देखिए जनाब आपका हमने शामिल कर लिया है टीएस चंदेल जी भाई, उम्मीद है आप खुश हो गए होंगे। मालिनी मैम, पूर्णिमा मैम, आपकी गजब प्रस्तुति रहती है कार्यक्रम की। वाओ, थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत आवाज़ों में इतने प्यार भरे कार्यक्रम जब सुनते हैं तो दिल झूम उठता है, और भाई आप लोगों की मेल देख के हमारा भी दिल झूम उठता है। अब भाई चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की ओर। नेक्स्ट सॉन्ग जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो अनुराग फिल्म से है, और आवाज़ है लता मंगेशकर की। एस जी बर्मन की धुन पर गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, और इस गीत के लिए हमारे पास जो पत्र आया है हम पत्र पढ़ेंगे भाई। ये हमारे पास आया है कस्बा अमरोधा उत्तर प्रदेश से, अब्दुल जब्बार राइन, आरिफ तारिक, आकिब राइन, शहीद अनवर, हमजा राइन, आयशा आरफा और आयजा राइन, हंजला राइन और संदीप राठौर, ग्रीन रोड अकबरपुर से अमीर बाबू, माज राइन, रेशमा बेगम, जब्बार मोहम्मद का। और एक और इसके लिए पत्र आया है हमारे पास दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, और कोटवा नारायणपुर से है, ये बलिया में जगह है, यहाँ से है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। और इसी गीत के लिए हमारे पास मेल आई है आरजी जी, आदाब। आदाब जी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमा नाज अंसारी और शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीबा। और एक और मेल हमारे पास दिख रही है, आपकी फरमाइश में मेरा भी नाम शामिल कर लीजिए, काशी निवास नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, वैष्णवी, हर्षल रंभाड़े और जानवी रंभाड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो वक्त भी देखिए बहुत तेजी से भाग रहा है, मैं सोच रही हूँ वक्त से पहले मैं भागूँ। नमस्कार जी, प्रोग्राम के सभी नगमे बहुत अच्छे लग रहे हैं, किसी भी गीत में हमारा मेल शामिल कर लीजिए। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल जी, तो आपका नाम देखिए शामिल हो चुका है। ये है भाई, ऐसी इमोशनल वाली भी आ जाती है मेल, पुराना तालाब, प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए मालिनी मैम, नहीं इग्नोर मैं नहीं कर रही हूँ, वलीउल्ला अंसारी जी लिख रहे हैं, पुराना तालाब डुमराव से सुल्तान अंसारी और आसमा नाज अंसारी, तो आपका नाम देखिए हमने शामिल कर लिया है। और गाना तो अब मैं प्ले कर चुकी हूँ, अब गाना आपको सुनना पड़ेगा।

और अभी जो गाना आपने सुना उसके लिए हमारे पास और मेल आई है आरजे मालिनी दीदी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, आपका प्रोग्राम बड़े लगन के साथ हम सुन रहे हैं। आपकी आवाज़ और गानों का सुर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेहरबानी करके हमारा भी नाम प्रोग्राम में शामिल करें। जी, हमने शामिल कर लिया दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी की ये मेल हमारे पास आई है। एक और मेल है हमारे पास इसी गाने के लिए, ये प्यार भरा आदाब मालिनी बुआ जी, ये भतीजे जी हर बार आ जाते हैं। आप कैसे हो प्लीज, आपके शानदार प्रोग्राम में हम बच्चों को भी शामिल कर लीजिए। प्लीज, आप बच्चों को हम जरूर शामिल करेंगे, वो पहले होते हैं बच्चे। आप सनावत से ही बेबी मक्ता स्कीन, अर्शिल शेख और मोहम्मद रजा आरिस शेख, तो आपका नाम देखिए शामिल हो गया है। और अब हम बहुत ही खूबसूरत ऐसा अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं, साहब बीबी और गुलाम फिल्म का, बहुत ही प्यारा सा गाना है। और इस गाने के लिए जो हमारे पास मेल आई है, वो मेल हमारे पास आई है बबीता राव बेली कला गोसाईगंज नवाबों के शहर लखनऊ से, ये मेल हमारे पास आई है। लिखती हैं, मैम जी आपके सभी प्रोग्राम्स और आवाज़ उन्हें अच्छी लग रही है, और पॉसिबल हो तो मेरा भी नाम शामिल कर लीजिए। तो लीजिए जनाब, आपका नाम हमने शामिल कर लिया है। और इसी गीत के लिए हमारे पास एक मेल और आई है न्यू दिल्ली से, कमलेश मुकुल सचिन और दीपांशु, इन्होंने भी अपना नाम शामिल करने को कहा है। आपका भी नाम हमने देखिए शामिल कर लिया है। और देखिए, आप फिर बार बार मेल कर रहे हैं, मैं एक बार बोलती हूँ कि जब एक बार मेल कर लेते हैं तो उसको बार बार प्लीज़ रिपीट मत करिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। और एक हमारे पास है प्यार भला आदाब दीदी जी, कोई भी हमारा भी नाम, खंडवा रोड सनावत से है शहबाज अरबाज फरहाज फरदीन समीर डॉक्टर मोइन शेख, इन्होंने हमें मेल करी है। और एक मेल आई है मालिनी सिस मतलब बहन सिस्टर, मालिनी से सुपर से ऊपर प्रस्तुति, ये है कहाँ से है चंद्रनगर सहारनपुर से मेल है, कौशल्या जोशी सुरेश जोशी और प्रभा जोशी, अंबाला से आशु खान और सोनाली खान, इन्होंने भी किसी भी गीत में नाम शामिल करने को कहा है। और इसी गीत के लिए देखिए हमारे पास पत्र भी आ चुका है। ये पत्र आया है हमारे पास कहाँ से, ये है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से है, एम फारूक कादरी फिरासत हुसैन मुनव्वर लल्ला पप्पू बिजली वाले शेख शमा परवीन अलकमर बेगम अफसाना बेगम महजबी शेख और यह है मिर्ज़ा नसरीन बेगम, इनका ये पत्र है। और इसी गीत के लिए एक पत्र और मेरे हाथ में है, ये पत्र

हमारे पास आया है। ये कहाँ से आया है? कस्बा अमरोधा से ये पत्र है आदिल आफरीन राइन का। और ये अब एक मेल स्क्रीन पर और दिख रही है, इस मेल को हम शामिल कर लेते हैं, फिर मैं सोच रही हूँ गाना प्ले करूँ। कुछ लोग मेल लगातार करते ही चले जा रहे हैं। जसपुर से है, उत्तराखंड से मेल हमारे पास आई है। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत और मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर, आपका नाम देखिए शामिल हो चुका है। और फिलहाल तो एंजॉय करिए गाना।

और दोस्तों वक्त को देखते हुए मुझे गाने को थोड़ा सा मतलब कम सुनाना पड़ रहा है आपको, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि नाम भी आपके शामिल कर लूँ और आपको कुछ थोड़ा सा गाना भी सुनाती चलूँ। फिलहाल तो अब अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मजबूर फिल्म से, किशोर कुमार की इस बार आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर गीत के वो लिखे आनंद बख्शी ने। और इस गीत के लिए हमारे पास जो मेल आई है वो हमारे पास मेल आई है, लिखते हैं सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते लिखा है इन्होंने। प्लीज़ अपनी किसी भी पसंद में हमें भी शामिल कर लीजिए। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामणि से हैं अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा कलेर बिहार से हैं, मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन, इनकी मेल आई है। और एक हमारे पास मेल और आई है, ये हैं आदरणीय मालिनी मैडम जी, आपको हार्दिक नमस्कार। नमस्कार जी, हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, काफ़ी देर से प्रतीक्षारत हैं। बहुत ही खूबसूरत हिंदी लिखी है आपने, एक नज़र हम पर भी ज़रा गौर फरमाइए। बेहतरीन प्रस्तुति के साथ साथ बेहतरीन नगमों का आनंद ले रहे हैं और हम आनंदित हो रहे हैं। बहुत अच्छा अच्छा मतलब हिंदी इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, इन्होंने भी गाने में नाम शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर की है। और ये हैं डोंडी लोहारा से प्रभा जमोरिया, अनुश्री जमोरिया और पूजा डॉली जमोरिया, चंद्रनगर सहारनपुर से सोनाली डोमीन और पथिक डोम, इन्होंने भी अपना नाम शामिल करने की गुजारिश की है। और अब हमारे पास एक और आई है मेल, ये जो अभी अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं उसके लिए मेल आई है, एक आई बड़ी प्यारी सी मेल है। मालिनी मैम, क्या आपको मेरा नाम पसंद नहीं है? भाई बिल्कुल, आपका नाम बहुत पसंद है हमें, हम किसी के नाम से क्यों बड़ा खफा होंगे। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू।

दीवाना श्वेता सोनी, प्रवीण सोनी और लाला सोनी, इनकी मेल आई। असल में होता क्या है ना, बहुत सारे लोग लगातार जो मेल करने लगते हैं तो जो एक बार मेल करते हैं ना उनकी मेल अक्सर नीचे चली जाती है, तो उस चक्कर में ऊपर वाली मेल ज़्यादा ज़्यादा आने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैं कहती हूँ एक बार मेल करिए, बार बार मत करिए। एक और हमारे रेगुलर लिसनर हैं प्रशांत शिंदे जी, इन्होंने भी मेल की, इनका भी नाम शामिल कर लेते, रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से इन्होंने मेल की है। प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे, सुनीता शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोटके की ये मेल है। तो फिलहाल क्या कहते हैं दोस्तों, गाना सुनवा दिया जाए, तो मैंने गाना प्ले कर दिया है, चलिए गाना एंजॉय करते हैं।

और अब प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग हम सोच रहे हैं आपको सुना दें, क्योंकि अब जो है वक्त भी भाग रहा है. तो चलिए लास्ट सॉन्ग जल्दी से आप तक पहुंचाते हैं. और इस गीत को हम सुनवा रहे हैं फिल्म भरोसा से लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर की आवाजें हैं और रवि की धुन पर गीत के बोल लिखे हैं राजेश राजेंद्र कृष्ण ने. और इस गीत के लिए हमारे पास जो मेल आई है, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से ऊपर के नाम थे. और एक नाम

हम पे यही कहेंगे कि आज की मुलाकात बस इतनी है और कल फिर सुनिएगा अपना पसंदीदा फोन, अपनी पसंदीदा आपकी फरमाइश प्रोग्राम रात 9 बजे से। फिलहाल तो मैं मालिनी करूंगी टाटा बाय बाय इस प्रोग्राम से। सुनते रहिए 103.7 FM पर विविध भारती का कानपुर केंद्र।

0: ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र, आप सुन रहे हैं एफएम 103.7 पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम छाया गीत। आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई। छाया गीत। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चल, नेचुरल है।
2: इसका सलूशन?
1: वो भी नेचुरल है। वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ, ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे।
2: वाओ, सो ब्यूटीफुल,
1: नेचुरल है। नेचुरल ब्यूटी वॉश।
0: सभी सुनने वालों का स्वागत है छाया गीत में।

एक साथ जिसके होने से वीराने भी गुलजार हो जाते हैं, दिल में महक उठते हैं कितने अरमां, और खुशबू आंखों में उतर आती है। बातों के सिलसिले में अक्सर वो एक नाम बार बार आता है और जिंदगी कितनी खूबसूरत नजर आती है।

एक वादा धड़कनों में सुनाई देता है, एक इल्तिजा बांधी है सांसों की डोर से। तुम्हारी खुशबू आती है हवाओं में, तुम्हारा नाम गूंजता है फिजाओं में।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।

0: नेचुरल है, इसका सोल्यूशन वो भी नेचुरल है। वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल, नेचुरल है। नेचुरल ब्यूटी वॉश।
1: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा, आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
2: हो बस तेरा ख्याल धीरे से बयां हो जाए वो शबनमी एहसास, आज तो वही मन्नतों की रात आई है, संग उन्हें कदमों की आहट लाई है।

मोहब्बत वो पाक जज्बा जिसके कदमों में झुक जाता है आसमां, यही है वो सबसे अजीम लफ्ज जिसमें सातों समंदर

अंदर और ये पूरी दुनिया समा जाती है। अगर सिमट जाए तो एक नन्हा सा दिल काफी है, जिसकी हर धड़कन पर लिखा हो तो सिर्फ मोहब्बत।

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सलूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैक हेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

दस्तबिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई

श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र एफएम 103.7 पर। रात्रि के 11 बजे हैं। अब हमारा आज का प्रसारण यहीं संपन्न होता है। कल प्रातः 5:50 पर हम फिर से प्रोग्राम के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।